0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्याम।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृहमंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृहमंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए जाने की जरूरत है।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिबोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा

0: पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। श्रोताओं आइए अब सुने कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है मति समति।

0: मति और सुमति मानव को परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ देन है। मति का सीधा और सरल अर्थ है बुद्धि। अनुचित आचार व्यवहार के व्यक्ति को लोक उसकी मति मारी गई है उक्ति से संबोधित करता है। मति को सुमति के रूप में काम लेना हम सबके अपने वश में है। जो सुमति के स्थान पर कुमति का सहारा लेते हैं उनका जड़मूल नष्ट हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरित मानस ग्रंथ में विभीषण से भरी सभा में रावण को कहलाया है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। साधारणतः मति का सुमति या कुमति में बदलना हमारे विवेक पर निर्भर करता है। आवेश और क्रोध सबसे पहले विवेक को छोड़ता है और फिर वो कुमति के मार्ग को अपनाता है। इसीलिए सनातन धर्म की सांस्कृतिक मनीषा में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध को और सबसे बड़ा मित्र धृति अर्थात धैर्य को माना गया है। दुनिया को सन्मार्ग पर रखने वाले प्रत्येक महापुरुष का सद्गुण धैर्य ही रहा है। धैर्य के माध्यम मति सुमति में बदलती है तो सब प्रकार के सुख अर्थात संपत्ति प्राप्त होती है और कुमति तत्काल ही विपत्ति का कारण बनती है। हमारा विवेक हर पल मति को सुमति में बदलने का हेतु है, लेकिन स्वार्थ और अहंकार जनित क्रोध उसमें बाधक बनता है। जीवन में हर तरह की संपत्ति सुख का मूल सुमति ही है। इसके लिए मति का विवेक सम्मत प्रयोग पहली आवश्यकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, विषय था मति सुमति। श्रोताओं आइए अब शुरू करते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मय गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसका अर्थ है मुझे असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमृत्व की ओर ले चलो। इसी भाव के साथ आइए शुरू करते हैं आज का वंदना कार्यक्रम।

अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत के अंतर्गत वंदना कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

श्री राम के सीता के साथ वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधि जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निःशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं हैं। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुध हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी एकदम अनाथ हो जाएगी। किंतु आसन्न वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्री राम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं, और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्री राम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं, जो श्री राम के अतिरिक्त गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानते। धर्म और नीति संबंधी उपदेश की आवश्यकता तो उसे होती है जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य और सद्गति की अभिलाषा हो। जो मन, वचन, कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम रखता हो, क्या उसका त्याग किया जा सकता है।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे रामचरितमानस कांड का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 103.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम विवरण से। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए प्रसारित होगा उनका अपना कार्यक्रम खेती नी बात।

प्रातः 7:20 पर समय होगा कार्यक्रम वातायन का। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे भावना द्विवेदी से वार्ता। वार्ता का विषय होगा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका।

हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर। युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय

0: ही चैनल है FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं किसान भाइयों और बहनों का अपना कार्यक्रम खेती नी बात।
1: खेती नी बात

खास कर आपको स्वास्थ्य में देख पाए जो हमारे स्वास्थ्य सही है फिर अपना खेती बाड़ी में काम या कोई भी काम अपना टाइम अनुसार कर सकते हो नहीं तो बस आप लोग नुकसान थी सके क्यों कि आप कीमत में कि दूर के पेड़ सुखनी रोगी का अपना शरीर सही है तो अपना गाड़ी काम कर सकता है क्योंकि आज कल सुना सा दौड़ाना अपनी स्वास्थ्य देखभाल जरूरी है खास कर मच्छर की तकी अपने मजबूत समय में जो मच्छर मक्के का गया था कि कई बीमारियां खिलानी संभावना थे इसके आने में मच्छर है तकी सावधानी जरूर है मच्छर जाड़े में उपयोग कर वो पंखा है तो इन्हें भी उपयोग कर वो क्योंकि आने में अपने में या बुरात भी करनी है अपने मच्छर दूर में मच्छर थके कहीं मलेरिया डेंगू ये मोटी मोटी बीमारी थी इसके लिए अपने सावधानी जरूरी है क्योंकि अपने घर में आसपास भी अपने सफाई काफी जरूरी है घर में आसपास कहीं टूटा टूटा बोतल कहीं गमला है या कोई खड्डा है पानी इकट्ठा है वो कोई तो पानी निकासी करी दी हुई है क्योंकि हमारा पानी थके हमने सुना संदर्भ अपना मच्छर पानी थके इस पन पे इडले हमें छोटे मोटे बर्तन जान रखू जरूरी है मच्छर कटवा थकी अपने नुकसान है इसलिए सावधानी रखी है किसान भाइयों ने हत्या कर जो भी करूंगा देसी नीमनी पत्ती थकी जो भी आप पशु हैं जो मच्छर हैं ये दूर जा सके खेती बाड़ी में काम भी आजकल खरीफ फसल मौसम हाड़ मक्का फसल है चाहे सोयाबीन करीबे आजकल खरपतवार नियंत्रण अपने टाइम अनुसार करी दे तीन भी खरपतवार और फसल में मुक्त बीमारी है खरपतवार अपन में साफ करूंगा तो आप फसल अपनी गाड़ी नहीं बढ़ सके इसलिए खरपतवार अपने में समय पर निकाल दे करपो तक भी नियंत्रण करें पसंद रासायनिक दवाई जाने भी नियंत्रण करे भी अपन से दवाई जा रही नियंत्रण करे तो उन्हें भी अपन में दवाई शक्ति को भी ध्यान रखो जरूरी है ये जहरीली है इन्हें अपने में अपना मोडू बांध हो गए आपका ने भी सुरक्षा चश्मा लगा हुआ है पैरा में अच्छी मोटी साइज में बूट पहनना है क्योंकि आप बूट में पहनेगा कोई जीव जानवर है तो इन्हें भी अपना देखभाल कर भी जरूरी किसान भाई क्योंकि आप दवाई करते होगा तो अपने आप सावधानी नहीं रखेंगे तो कहीं आपको नुकसान थी सके

0: बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आदिवासी लोक संगीत। आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं माधवानंद भारती व साथी कलाकारों की आवाज में गाए कुछ लोक भजन।
1: हरी राम का गा मिला रे, तुरत बदलिया बंस।

0: चंद्र बांकुआ
1: गजानन भूत घनादि सेवितम कपीत जमो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद

गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भ्रंग का, गुरु कर ले आप समान, गुरु कर ले आप समान। अरे ऐसो रे दाव भिरा, और नहीं आवे ऐसो दाव भिरा,

अरे सतगुरु जी समझावता, अरे चेले मानी ना, अरे चेता चेता जा पड़ो रे भाया ऊंडा कूड़ा मा। अरे सतगुरु जी समझावे रे थरे, ओ जन गुरु जी समझावे।

0: किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा पीढ़ी होती है।
1: इस भजन के साथ ही कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:20 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भावना द्विवेदी से वार्ता। वार्ता का विषय है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। आइए श्रोताओं सुनते हैं ये वार्ता।
0: किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा पीढ़ी होती है। युवा केवल देश का भविष्य ही नहीं है, बल्कि वे वर्तमान को दिशा देने की क्षमता रखने वाले होते हैं। जिस देश के युवा जागरूक, शिक्षित, स्वस्थ, अनुशासित और जिम्मेदार होते हैं, वो देश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं

वो देश के वर्तमान के साथ साथ उसके भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। हमारा देश भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। यह हमारे लिए एक बड़ी ताकत है और गर्व की भी बात है। लेकिन हमें यहाँ यह समझना होगा कि केवल युवाओं की बड़ी संख्या होना ही राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता है। युवा शक्ति को सही दिशा, सही शिक्षा, कौशल अवसर और सकारात्मक सोच ही इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। राष्ट्र निर्माण का वास्तविक अर्थ बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित कर आर्थिक विकास करना, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना या सड़कें बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के अर्थ से तात्पर्य है एक ऐसा मजबूत, समृद्ध, शिक्षित, स्वस्थ, संस्कारी, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार समाज बनाना है जहां निवासरत प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने चाहिए और इस कार्य में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। हम अपनी भूमिकाओं में शिक्षा और ज्ञान, कौशल और आत्मनिर्भरता, तकनीक का सकारात्मक उपयोग, स्वास्थ्य और नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, महिला सम्मान और समान अवसरों के साथ लोकतांत्रिक और नागरिक जिम्मेदारी निभाते हुए सेवा भावना के साथ अच्छे चरित्र और ईमानदारी के साथ उत्तम राष्ट्र के लिए अपनी पहल कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहली भूमिका शिक्षा और ज्ञान की होती है। युवाओं की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने ज्ञान का उपयोग समाज और देश के हित में करें। आज का युग ज्ञान और तकनीक का युग है। केवल पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आज जरूरत है युवाओं को नए कौशल को सीखने की। आज हमें ज्यादा से ज्यादा तकनीक ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। हमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना पड़ेगा। एक शिक्षित और जागरूक युवा न केवल अपने परिवार का भविष्य बदल सकता है बल्कि अपने गांव, शहर, पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है। आज हमें कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ने की जरूरत है। आज हमारा देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में युवाओं को नौकरी की तलाश करने के साथ साथ रोजगार देने वाला बनने की दिशा में सोचना होगा। सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागना अब छोड़ना होगा। युवा अपने कौशल के आधार पर छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप, कृषि आधारित उद्योग, डिजिटल सेवाएं, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रों में नए अवसर पैदा कर सकते हैं। आज हमारे गांवों के युवा आधुनिक तकनीक और पारस्परिक ज्ञान का उपयोग करके कृषि, पशुपालन, आयुर्वेदिक दवाओं में काम आने वाली वनस्पतियों के रोपण, संवर्धन, संग्रहण के साथ हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योगों को नई दिशा दे सकते हैं। इसी तरह तकनीक का सकारात्मक उपयोग करके भी राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। आज मोबाइल फोन और इंटरनेट युवाओं के हाथ में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इंटरनेट का उपयोग हमें केवल मनोरंजन या सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसके द्वारा शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं की जानकारी, ऑनलाइन प्रशिक्षण, डिजिटल सेवाओं और सामाजिक जागरूकता के लिए किया जा सकता है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों प्रयास सरकार द्वारा करने पर भी सबके लिए स्वास्थ्य का WHO का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। इसके कई कारणों में एक युवाओं द्वारा नशा की गिरफ्त में आना प्रमुख है। वे अल्पायु में ही कहीं गंभीर बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं, इसलिए नशा मुक्ति का अभियान युवाओं को संकल्प लेकर चलाना चाहिए। स्वस्थ युवा ही स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए युवाओं को नियमित व्यायाम, योग, खेलकूद, संतुलित आहार और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण की चुनौतियों का सामना कर रही है। पर्यावरण की दिशा में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दे सकती है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, प्लास्टिक का कम उपयोग, स्वच्छता और ऊर्जा की बचत जैसे छोटे छोटे प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। युवा अपने गांव और शहर में स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभा सकते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि प्रकृति की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा करना है। राष्ट्र निर्माण में सामाजिक समरसता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे युवा अपना भरपूर सहयोग दे सकते हैं। हमारा

0: अनेक भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और विविधताओं वाला देश है। हमारी यही विविधता हमारी शक्ति है। युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देने की बजाय आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता को मजबूत करें। एक दूसरे का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखना भी राष्ट्र के सेवा का ही एक रूप है। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम बेटियों और महिलाओं को समान अवसर और सम्मान देंगे। आज युवाओं को महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना, बाल विवाह, दहेज, लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के प्रति हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण केवल सरकार ही नहीं करती, इसमें प्रत्येक नागरिक की भूमिका होती है। हम लोकतांत्रिक और नागरिक जिम्मेदारी द्वारा राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। युवाओं को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझना चाहिए। कानून का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, स्वच्छता रखना, यातायात के नियमों का पालन करना और समाज के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करना भी अच्छे नागरिक की पहचान है। लोकतंत्र में युवाओं को जागरूक रहना चाहिए। हमें देश के विकास से जुड़े मुद्दों पर तथ्यों और तर्कों के आधार पर संगठित होकर राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देना होगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा बड़े पद या बड़ी संस्था की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाना, रक्तदान करना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करना, गांव में स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करना जैसे कार्य करके भी देश को मजबूत बनाने की दिशा में एक सुंदर पहल हो सकती है। एक युवा अपने आसपास रहने वाले 10 लोगों के जीवन में भी यदि कोई सकारात्मक परिवर्तन लाता है तो वो राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्र निर्माण की टीम मजबूत चरित्र पर निर्भर करती है। हमें चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ते पर चलने का साहस रखें। ईमानदार नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की पहचान होते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि राष्ट्र निर्माण कोई एक दिन या एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज का युवा डॉक्टर बनकर समाज की सेवा कर सकता है, शिक्षक बनकर ज्ञान बांट सकता है, किसान बनकर देश का अन्न भंडार भर सकता है, वैज्ञानिक बनकर नए आविष्कार कर सकता है, सैनिक बनकर देश की रक्षा कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक संकल्प जरूरी है कि वो अपने देश के प्रति ईमानदार रहे, अपने कर्तव्य का पालन करे और अपनी क्षमता के अनुसार राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवे। तभी हम राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के संकल्प को साकार कर सकेंगे।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भावना द्विवेदी से वार्ता। वार्ता का शीर्षक था राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। इसी के साथ कार्यक्रम वातायन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:30 होने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

छोटी सी बात, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। योगेश ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

फिल्म धरती से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था। और इससे पहले जो आपने गीत सुना छोटी सी बात, उसके गायक कलाकार थे येसुदास और आशा भोसले। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम हैं राही प्यार के।

0: हूँ। सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
1: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है। तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

0: मस्ताना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीज़।

0: शाम ये सुहानी रुत मस्तानी, शाम ये सुहानी रुत मस्तानी, झूम जवानी हो के दीवानी, मेरे पास न आ ओ हसीना
1: प्यार की बराती।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को इस वक्त आप सुन रहे थे हिम्मत फिल्म से। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

रातों का राजा इस फिल्म से अभी ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम है राही प्यार के यहीं संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति

0: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्यौहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
3: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया जिसमें हजारों विद्यार्थी

0: सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेनजी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
1: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 से 5 के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।

0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
1: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्य की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल पर आपका अपना कार्यक्रम कुछ दिल से। मैं हिना जैन आपकी दोस्तों रेडियो होस्ट स्वागत करती हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में। दोस्तों, युवा सिर्फ उम्र का पड़ाव नहीं है, युवा वो है जिसकी आंखों में सपने हैं,

जिसके दिल में जुनून है, जिसके कदमों में आगे बढ़ने की बेचैनी है और जिसके भीतर कुछ नया करने का हौसला है। दोस्तों, हर साल 12 अगस्त को यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर युवा होना क्या है? क्या सिर्फ उम्र कम होना युवा होना है? नहीं, युवा होना है मुश्किलों के सामने उम्मीद बनाए रखना, गिरकर फिर उठना, गलतियों से सीखना और अपने साथ साथ समाज और देश को बेहतर बनाने की कोशिश करना। तो आइए आज युवाओं के सपनों, उनकी चुनौतियों, उनकी ऊर्जा और उनकी संभावनाओं की बात करते हैं कार्यक्रम कुछ दिल से में। लेकिन उसके पहले सुनते हैं ये मधुर सा गीत।

दोस्तों, युवा उम्र का वो दौर है जब सिर्फ सपने देखे नहीं जाते बल्कि उन्हें पूरा करने की जी तोड़ कोशिश भी की जाती है। इस उम्र में आंखों में हजारों ख्वाब होते हैं, मन में हजारों सवाल होते हैं और दिल में कुछ कर गुजरने की चाह होती है। कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी बहुत मुश्किल। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन युवा वही है जो असफलता को अंत नहीं एक नई शुरुआत समझे। ख्वाब आंखों में रखो, हौसला दिल में रखो। रास्ते कितने भी मुश्किल हो, कदम हमेशा मंजिल की ओर रखो।

श्रोताओं, युवा जीवन में सबसे बड़ा डर अक्सर असफलता होता है। परीक्षा में नंबर कम आ गए तो, नौकरी नहीं मिली तो, व्यवसाय में नुकसान हो गया तो, या कोई सपना अधूरा रह गया तो, और हमें लगता है शायद हम हार गए। लेकिन सच तो ये है कि असफलता हमें रोकने नहीं, हमें सिखाने आती है। हर गिरना हमें अगली बार संभालना सिखाता है। हर ठोकर हमें रास्ता पहचानना सिखाती है। इसलिए आज अगर कुछ गलत हो गया तो उसे डरिए मत, क्योंकि अगली बार आप जानते हैं ऐसी स्थिति को कैसे निपटना है। हार से मत डरना, हार तो रास्ते का एक पड़ाव है, जो चलते रहते हैं मंजिल उन्हीं का इंतजार करती है। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, युवा सिर्फ अपने भविष्य के लिए नहीं जीता, युवा अपने समाज को बदलने की शक्ति भी रखता है। एक युवा अगर किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाता है, पेड़ लगाता है, रक्तदान करता है, किसी बुजुर्ग की मदद करता है या अपने आसपास स्वच्छता का संदेश देता है, तो वह सिर्फ एक काम नहीं कर रहा बल्कि समाज में बदलाव की शुरुआत कर रहा है। बदलाव हमेशा बड़े मंच से नहीं आता, कभी कभी एक छोटा सा अच्छा काम किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित कर देता है और फिर वही प्रेरणा दूसरे तक पहुंचती है। और बदलाव लाने की सबसे ज्यादा क्षमता युवा में होती है।

एक दीप जलाओ तो उजाला होगा, एक कदम बढ़ाओ तो रास्ता होगा। एक युवा अगर ठान ले कुछ करने की तो बदलाव का नया सिलसिला शुरू होगा। याद रखिए, युवा शक्ति सिर्फ ऊर्जा नहीं, जिम्मेदारी भी है। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज की युवाओं के सामने एक और बड़ी चुनौती है, दूसरों से अपनी तुलना करना। किसी की अच्छी नौकरी, किसी की अच्छी गाड़ी, किसी का अच्छा करियर, तो किसी की खूबसूरत सी दिखने वाली सोशल मीडिया की जिंदगी। और हमें ये सब कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं कहां हूं। लेकिन दोस्तों, आपको किसी और की जिंदगी नहीं जीनी है। आपकी यात्रा अलग है, आपका समय अलग है और आपकी मंजिल अलग है। जरूरत है तो बस खुद को पहचानने की, खुद की मंजिल को जानने की, ना कि किसी और से तुलना करने की। अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए और अपने समाज और अपने देश को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ दोस्तों, समय हो चला है अब आप सभी से विदा लेने का। अगली बार फिर मिलेंगे नए दिन नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत आपकी दोस्त हीना जैन को। नमस्कार।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब समय हो चला है राजस्थानी लोक संगीत का। राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सीमा मिश्रा की आवाज में गाए कुछ राजस्थानी गीत।

फिर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक आज जयपुर में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से अब तक अनुसूचित जाति जनजाति के 8 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए। प्रदेश में मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन सेतु ऐप लागू किया जाएगा और पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश से बांधों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज, आज 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में आज ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हिस्सा लेंगी। बैठक में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को अधिक मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वे वंदे भारत ट्रेन से कल नई दिल्ली से जयपुर पहुंची। यात्रा के दौरान उन्होंने सहयात्रियों से बातचीत की, साथ ही उन्होंने युवाओं से वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और युवा वर्ग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सामाजिक न्याय राज्य सरकार की नीतियों की आत्मा है और वंचित वर्गों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने ये बात जयपुर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान कही। उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों से उनके प्रशासनिक अनुभव का उपयोग युवाओं के मार्गदर्शन के लिए करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से करीब 4.25 लाख और अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्र

0: मुक्ति योजना से 4,30,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 887 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कल ही जयपुर को पीएम ई बस सेवा के तहत 16 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी। उन्होंने शासन सचिवालय में बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई बसों के संचालन के लिए बस स्टैंड चार्जिंग प्वाइंट सहित जरूरी ढांचा विकसित किया जा रहा है।
1: हमारी बसें लगातार आ रही हैं और लगभग इनकी संख्या 1,000 से ऊपर जयपुर और भीलवाड़ा को 16 पीएमई बसें समर्पित की गई हैं और उदयपुर जोधपुर बीकानेर अलवर कोटा वहां भी हमारी ये बसें जा रही हैं। हम चाहते हैं कि इन बसों के माध्यम से जो एक यातायात का जिस तरह से व्यक्तिगत वाहनों पर एक लोड है समय के हिसाब से इन बसों का संचालन होगा तो आरामदायक सुविधा भी मिलेगी वो वहां पहुंचेंगे और एक पर्यावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो भी पूरी होगी।
0: प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर क्षेत्रीय शाखा ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी मामले में सुभाष चंद्र बिजनौरिया को गिरफ्तार किया है। ईडी के कल जारी किए गए बयान के अनुसार इस मामले में सुभाष चंद्र बिजनौरिया रणवीर बिजारनिया और उनके सहयोगियों पर रियल एस्टेट के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इन लोगों ने निवेशकों से 2,676 करोड़ रूपये जुटाए थे। आरोपी सुभाष चंद्र को जयपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें कल तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरलम नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी आज विचार और पारित होने की संभावना है। लोकसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक विचार और पारित होने के लिए पेश किया जाएगा। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन सेतु ऐप लागू किया जाएगा। इस ऐप के जरिए मरीज की जरूरी जानकारी उसके पहुंचने से पहले ही संबंधित अस्पताल तक पहुंच जाएगी जिससे उसके इलाज की तैयारी पहले से की जा सकेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में उन्होंने मातृ मृत्यु के मामलों की समीक्षा करते हुए उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों की जांच और जरूरत पड़ने पर उनके निशुल्क उपचार में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में लंबित पदस्थापन अब राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने पदस्थापन प्रक्रिया को पारदर्शी सुव्यवस्थित और आवश्यकता आधारित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नवचयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदस्थापन भी इसी पोर्टल से कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज हेल्थ पोर्टल से पदस्थापन होने पर उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर उपयोग होगा और अधिक मरीज भार वाले संस्थानों में चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी। उन्होंने अधिकारियों को नई भर्ती से चयनित और पदोन्नत कार्मिकों के लंबित पदस्थापन जल्द पूरा करने को कहा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन विभिन्न विकास कार्यों केंद्र सरकार से स्वीकृत एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि स्वीकृतियों के अभाव में लंबित परियोजनाओं के लिए जल्द ही कार्य योजना बनाई जाएगी और उन पर काम किया जाएगा।
2: अभी सभी बातों पर सभी मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है और जो अगर कोई कंप्लाइन नहीं कर पा रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कमी है कहीं कुछ है तो उन पर एक्शन भी लेना है। नौ एक्सप्रेस वेज है उनपे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ कि एनएचएआई ने जो ले रखा है उनपे भी अभी तक क्या हुआ।

0: बारिश में है या और कहीं है, उनके भी अब हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जो स्टेट पीडब्ल्यूडी कर रहा है उसको भी हम लोग जल्द से जल्द इनके जहां जहां पर कहीं भी कहीं रुकावट है उस रुकावट को दूर किया जाए और जल्द से जल्द उनपे कार्रवाई की जाए।
1: उधर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्य में ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाने को कहा। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से कई स्थानों पर बरसात का सिलसिला जारी है। सवाईमाधोपुर में सुबह से ही हल्की से मध्यम बरसात हो रही है। बारिश से जहां एक ओर जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक हुई है, वहीं निचले इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाड़ोती और चंबल नदी घाटी क्षेत्र में 3 प्रमुख बांधों गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर में जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं शिवालिक की पहाड़ियों में बारिश के बाद घग्गर नदी के नाली बेड में पानी की आवक शुरू हो गई है। विभाग ने आज भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और सवाई माधोपुर के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। वहीं शेष जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट है। यहां हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार कल से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में आज ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से अब तक अनुसूचित जाति जनजाति के 8 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए। प्रदेश में मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन सेतु ऐप लागू किया जाएगा। और पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश से बांधों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज, आज 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:30 होने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संघ संकारा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि ये संदेश भेजते रहिए।

0: और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
1: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
0: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
1: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं, तो श्रोताओं आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
0: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भू विज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
1: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
0: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओं, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
1: श्रोताओं, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
0: जी।
1: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
0: श्रोताओं, पहली बात, राष्ट्रध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
1: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोष, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
1: जी हाँ श्रोताओं, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
0: तो आइए श्रोताओं, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
1: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
1: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे तभी एक दिन

0: अरे दिलीप, हाँ सुभाष, अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई? कक्षा में नहीं चलना क्या?
1: वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
2: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
1: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियां खाने का शौक है, है? मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
2: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
1: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
2: तो फिर?
1: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
2: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध करने के लिए खड़ा कौन होगा?
1: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
2: सुभाष, प्रोफेसर ओटन आ रहे हैं।
3: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या खाता तुम?
1: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर ओटन।
3: Is that right? You black monkey?
2: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
3: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
1: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
3: क्यों ब्लडी रैस्कल, यू आर टेलिंग मी व्हाट टू डू? तुम्हारा यह हिम्मत?
1: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
3: तो क्या करेगा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? यू स्काउंडरल, यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
1: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
3: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
1: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
4: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
1: क्या तुम सभी नेता पकड़े गए?
2: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
1: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
2: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
1: और अपने सुभाष बाबू?
2: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
1: कितनी सजा हुई? नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
2: क्या हुआ सुभाष बाबू?

0: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूँ कि कोई मुर्गी चूँ?
1: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
0: कौन? शिशिर?
2: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए।
0: आओ अंदर आ जाओ, क्या खबर है?
2: सब तैयारी हो गई है, पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोरमू से ट्रेन में बैठेंगे, मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
0: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
2: उसका भी प्रबंध हो गया है, आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
0: ठीक है।
2: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी, किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी ज़ियाउद्दीन नहीं है।
0: तो फिर ठीक है,

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब है मौलवी साहब।
1: आदाब। ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
1: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
3: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
1: अच्छा, खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कहीं न जाने क्या हो। ये अखबार कहां गए? हाँ, ये रहा, कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चिंगन छिपाने के भी काम आएगा। थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते

हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की।

0: थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी ने बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया,
1: जय हिंद
2: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्यौछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
4: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।

0: मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे।

0: श्रोता।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 10 बजने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
2: सेल्यूलॉइड

0: सेलुलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
1: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई, है ना। अब बात ये है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
2: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
1: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
2: जी
1: है।
2: जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
1: ओके।
2: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे गाना, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
1: अरे अरे।
2: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म
1: ऑडिशन से मिली थी।
2: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी। हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
1: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।

0: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन, बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का, एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर, तो मैंने वही पे स्कोर किया।
1: क्या बात है
0: कि, और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था, एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
1: यू हैव टू सिंग
0: ओके।

0: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल।
1: हाँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया।
1: हाँ।
0: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे कि इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने के?
1: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स की फिल्म
0: टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
1: यस, सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड हम लोग ऐसे लोगों के साथ, और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ गए, और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स। तो वो मतलब बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस।
0: चार पांच धड़कन मिस।
1: बिल्कुल टोटल। और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा, वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था। पैसे भी अच्छे मिले थे, लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था। तो बर्लिन आले जब होती है ना, बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे। एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट की, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी।
0: बिल्कुल,
1: इंडिया में ऐसे कोट्स मिलते ही नहीं थे। वो तो बाद में ब्रिक लेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
0: क्या एक्सपीरियंस था वो?
1: हाँ, मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने और मिल रहे किसे, कियानो रीव्स।
0: वाह वाह वाह।
1: तो ये
0: यही तो मजा है,
1: बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे, और हम लोगों को रिट्स कार्लटन में ठहराया गया था। तो हम तो पागल हो गए थे, मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट,
0: ग्रैंड,
1: या बट thankfully later in life this became a norm in life, like many more films happened like this, jahan matlab bahut travel maine kiya, jury mein bhi rahi, aur ye धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये
1: दिस इज द बिगिनिंग।
0: यस बिल्कुल, लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल फिल्म्स और उनमें अवार्ड्स लेने और तारीफ पाने का सिलसिला लगातार चलता रहा।
1: जी,
0: तो इसके बाद कौन सी फिल्म आई?
1: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की
0: मेनन के साथ,
1: राजा मेनन के साथ ही किया एक, और फिर ब्रिक लेन हैपेंड। फिर कुछ दिन, कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी। फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा नहीं।
0: उस दौरान एक बांग्ला फिल्म भी की,
1: बिबौर। हाँ, बांग्ला बिबौर भी की। फिर मुझे ब्रिक लेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके। फिर ब्रिक लेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए।
0: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?
1: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे।

0: इसलिए था और मैंने शादी भी कर ली ये भी था,
1: ये भी था। हाँ,
0: प्यार हो गया ये भी था, दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो, रॉयल ओपरा हाउस में। जॉसलिन पुक, जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के, तो बहुत मजा आया काम करके। और फिर
1: क्या फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
0: द थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, प्रोफेशनली चलती है वो। लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए कि आप सिर्फ थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहां। तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफर करेगी। क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूं जो मैंने और शारिब हाशमी हम दोनों ने मिलकर लिखा, पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे। ये हॉबी हो जाती है, जबकि हम अपने पूरे, मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं, बट नो वन इज फंडिंग अस।
1: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
0: या तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं।
1: बिल्कुल,
0: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है।
1: ऑफ कोर्स,
0: बट द थिंग इज वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज वो है ही नहीं।
1: तो लंदन में थिएटर होता रहा।
0: हाँ,
1: अलग अलग प्रोडक्शंस में काम किया।
0: और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेठ और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो।
1: क्या बात है,
0: इट वाज फैंटास्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिक लेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ
1: एवरीथिंग। यस, मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई?
0: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना। फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको। बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की। सो ऐसी चीजें मैं करती गई।
1: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
0: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वाज लाइक, यू नो, जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए। सो वर्क वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर। आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली।
1: अच्छा,
0: तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं वहां रही थी पर यहां काम कर रही थी काफी सारा। सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी, बट आई वाज डूइंग वर्क हियर। तो मुझे लगा कि यहां थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए,
1: तो आप वहां से वापस आ गई।
0: वापस आ गई।
1: और
0: एक चीज थी, मुझे पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं। सो द वेदर वॉज गेटिंग ऑन टू माई नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट।
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया।
0: जी।
1: भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
0: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए हुई।
1: अच्छा।
0: क्योंकि वो भी वहीं का प्रोडक्शन था। या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे, ही इज ब्रिटिश।
1: ओके।
0: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
0: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे।
1: ओके।
0: और मार्टिन शीन, काल पेन।
1: अच्छा, हाँ,
0: वो इंटरनेशनल फिल्म।
1: करेक्ट, करेक्ट।
0: या
1: जी जी जी, बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी।
1: अच्छा।
0: और
1: एक ट्रेजेडी होने वाली है उसके इर्द गिर्द।
0: हाँ,
1: बुनी गई।
0: हाँ। फिर मैंने अन्ना कारेनिना भी किया उस समय, व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ, मतलब काफी सारा वहां इधर दोनों का काम कर रही थी।
1: बिल्कुल मजेदार है ये। मुझे लगता है कि यहां भी एक गाना सुनते हैं। फिर आगे की बात करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
1: मुझे नूर जहान के गाने जो हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।
0: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है, आवाज दे कहाँ है।
1: बिल्कुल,
0: वो भी सुना जा सकता
1: है। वो भी, हाँ हाँ, वो भी सुना जा सकता है।

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की, मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म है, इंडिपेंडेंट फिल्म भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव एन वाई सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें,
0: वो एक फिल्म थी,
1: वो मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी। और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम, सो आई हैड द प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन स्क्रीन,
0: डंपिंग द मेन हीरो, क्या बात है, मजे की बात है।
1: हाँ, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी और बहुत ही अच्छी फिल्म मेकर है वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास। और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो। स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते

0: आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है।
1: एक सील ठप्पा एक टाइप कास्ट वाला मामला,
0: बट ऐसा नहीं होता है, यू नो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स पार्च्ड की मैंने पार्च्ड
1: मैं बस उसी की तरफ आ रहा था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म आपके करियर की है पार्च्ड, जो महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना
0: चाहिए। यस, और पार्च्ड वॉज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन इनिशियली।
1: अरे वाह,
0: यस,
1: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था।
0: हाँ
1: वाह,
0: मैंने ये लिखा था और मैंने एक दिन हम लोग मिले थे लीना और असीम और हम सोच रहे थे कुछ करे, तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं, मैंने कहा बनाओ मैं दे देती हूँ तुमको। सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड, देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का, एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले और ऐसे करके बनी वो
1: एक शानदार फिल्म।
0: हाँ, वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी और
1: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें।
0: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सबकी कास्टिंग हुई एंड वी हैड लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, यू नो, शूटिंग दिस टूगेदर, बॉन्डिंग, एंड हमने साथ में बनाई इस फिल्म को, यू नो, वी ऑल गॉट टूगेदर एंड मेड द फिल्म। रसल कार्पेंटर, जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है,
1: ही
0: इज अ सिनेमाटोग्राफर ऑफ एवटार्स एंड टाइटैनिक, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों ही शॉट द फिल्म, और ये असीम बजाज की वजह से है,
1: हु
0: इज आवर प्रोड्यूसर और लीना के पार्टनर भी हैं वो। सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर, वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए,
1: वाह,
0: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन
1: बड़ा हो गया और फिल्म बात भी बड़ी करती है।
0: हाँ,
1: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची।
0: यस, एंड लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई।
1: वाह,
0: यू नो, सो इट वाज रियली फैंटास्टिक एंड आल्सो वर्किंग विद सच अमेजिंग एक्टर्स, सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया।
1: बिल्कुल सही है। जोरम के बारे में बात कीजिए क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है।
0: हाँ, तो अगेन देवशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है।
1: वाह,
0: ही इज अनअपोलोजेटिक अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट।
1: बिल्कुल,
0: जो
1: अपनी तरह की फिल्में करनी है
0: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है, और मैं इसलिए देवशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ। तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था तो मैं एक्चुअली आबूधाबी में थी, आई वॉज शूटिंग फॉर फिल्म कॉल येल्लो बस, और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है। तो देवशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है बट आई वांट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वांट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस। मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूँ।
1: वाह,
0: दैट्स ऑल,
1: क्या बात है। और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटोरी देवाशीष की तमाम फिल्मों की तरह।
0: बिल्कुल कमाल, और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया। एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है,
1: बिल्कुल,
0: यू नो, इज सच अ ब्यूटिफुल पर्सन। एक्टर तो सबको पता ही है वो है।
1: बिल्कुल, तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है। मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है और मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं।
0: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है।
1: हाँ बिल्कुल, पीछे
0: मैंने गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई, फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ और वो काफी तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है।
1: अच्छा,
0: थी वो, और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था, वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था। और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था।
1: अच्छा,
0: आनंद जी के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ, तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही, एंड व्हाई कांट इट बी अ शी, because he was actually offering me a role in the film but not the central character,
1: right?
0: So he said okay, aur main Dallas ja rahi thi next day kisi aur film ke liye,

0: he said ki okay, these are your dates and you come. And yeah, now it's not he, it's she. I was like, okay.
1: Wow,
0: wonderful.
1: Kya baat hai.
0: Then उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमा भाई,
1: वो भी उनके साथ ही, उनके साथ जिसका जिक्र हमने अभी पीछे किया,
0: बिल्कुल
1: देश की पहली डॉक्टर, महिला
0: डॉक्टर, देश की प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर
1: जी, हाँ,
0: वो की मैंने. और उसमें तो बहुत ही मतलब इट वाज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी. और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणे चा मुलगी हूँ.
1: क्या बात है.
0: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया एंड आई वॉज लाइक कन्फ्यूज कि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा
1: जो वहां दिख रहा है.
0: वहां दिख रहा है. एंड इट वॉज ओल्ड मराठी ऑल्सो.
1: यस,
0: इट्स नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ. अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो, यू नो, बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल, तो आपको सीखना है और आप बिल्कुल सीखो, अच्छे से सीखो.
1: क्या बात है. तो तीन फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ.
0: अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है.
1: क्या बात है. एक ही डायरेक्टर के साथ चार फिल्म.
0: हाँ, उनके साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आता है. वो सब्जेक्ट हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं, मतलब दे आर सो. तो पास्ट टेंस में परेश और स्टोरी टेलर भी की फिफ्थ. यस,
1: लीजिए एक फिल्म तो छूटी गई थी.
0: आई हैव डन स्टोरी टेलर ऑल्सो विद आनंद जी.
1: क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इम्पोर्टेंट फिल्म है और बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया.
0: जी जी जी जी. एंग्री इंडियन गॉडेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है. और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें, क्योंकि वहां पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था. ऑल द एक्सेप्ट फॉर माय कैरेक्टर, एवरीबडी ऑल्सो डेवलप देयर ओन कैरेक्टर्स. मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय विकास मिश्रा की, इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था. दैट्स व्हाई आई हैड टू जॉइन दैट प्रोसेस लेटर. तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. दे हैव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ. आई कुडंट बी, जबकि मैं मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस और वो एनी वे. सो इट वॉज लाइक कम्प्लीटली डिवाइज्ड एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था एक साल और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया, जिस ढंग की मतलब कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई, यू नो एवरीथिंग वॉज. सो द फिल्म केम आउट ऑफ दैट. सो इट्स अ पर्सनल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस, एंग्री इंडियन गॉडेसेस.
1: वाह, बिल्कुल. और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला, उसका काफी नाम हुआ उस फिल्म का. यहां भी एक गाना सुनते हैं.
0: बिल्कुल.
1: कौन सा गाना होगा?
0: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है. उसका जो मतलब मेरा फेवरेट गाना बावरा मन.
1: हमने अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है.
0: हाँ.
1: अब हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते हैं.
0: स्वानंद माफ कर दे. पर ये एनएसडी में जब हम थे ना, वो तब से गाता था.
1: तब से गाते. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल.

0: अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?
1: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माई फादर एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये। और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरिड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं। एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माई प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वॉज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी, इफ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल। तो उसके बाद काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब व्हाइल वी वर शूटिंग इट, सो इट वाज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। और फिर फिल्म खत्म हुई, शूटिंग खत्म हुई तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म। इट वाज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। फिर जब वो हुआ और हमने एडिट खत्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट randomly gone to my gynecologist to do some checkups. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। और वहां उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है।
0: लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं आया, आप काम करती रही लगातार।
1: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में

0: और उसने कोई संकेत नहीं दिए।
1: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज। सो आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: यू नो, एंड इट वाज अनरियल। और इट वाज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माय फादर टू
0: द सेम थिंग।
1: या इट वाज, ही हैड क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया, CML। So I didn't know how would I tell my mother.
0: Oh God.
1: तो मैं reports जो है हर दिन एक positive report निकलता था, मतलब आपके लिए वो negative है उस समय, कि हर every report is positive, ये भी positive है ये भी। तो मैं reports गाड़ी में रखती थी और फिर ऊपर I had a 9-year-old, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी, daughter and a mother who had lost her husband just like, you know, a year back, and I didn't know how to tell her. But obviously I had to tell her at some point. मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी, और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है, बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन। तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वाज टॉकिंग टू दीज टू पीपल। मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम, बट यू कांट डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूं, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है। मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूं, नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर, इमोशनली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली, देर इज नोबडी एल्स, सो हाउ वुड आई डू दिस, एंड द एक्सपेंसेस ऑफ माई ट्रीटमेंट इज अबनॉक्शियसली हाई। इनिशियली इंश्योरेंस ऑल्सो रिफ्यूज माई क्लेम।
0: क्यों?
1: उनके बहुत ही गंदे फंडे होते हैं, उसके अंदर मैं जा ही नहीं रही हूँ, एंड आई हैड टू फाइट एंड फाइट एंड फाइट विद द इंश्योरेंस।
0: आप जीती?
1: यस। बट द थिंग इज देयर वर टू मेनी बैटल्स, यू नो, इसमें मैं हील कैसे हूँ, बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग, एंड आई वॉज कमिंग, एंड द स्ट्रेस ऑफ द फिल्म,
0: वो तो रखा ही हुआ था।
1: तो इट वॉज जस्ट, आई हैड रीच द रॉक बॉटम द डे द इंश्योरेंस क्लेम गॉट रिजेक्टेड। मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू, और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि योर इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड। दैट डे आई रियली हिट द रॉक बॉटम, कि यार इसके आगे अब अच्छा ही होगा, इससे बुरा और क्या होगा।
0: बिल्कुल।
1: बट माई सिस्टर टोल्ड मी कि नहीं, तुमको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल योर फ्रेंड्स, नहीं तो If not now, then when? वो सिर्फ पार्टी करने के लिए है क्या? That's when I reached out. मेरा एक गर्ल गैंग है, मैंने सबसे पहले उनको बताया।
0: वो लोग कौन है?
1: शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है,
0: इसलिए तो मैंने नाम पूछे हैं।
1: और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकोना है, विद्या है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मतौंदकर है, दिस वाज आर गर्ल गैंग, ऋचा चड्डा है। तो ये इन्होंने मुझे, एक्चुअली ऋचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया, जिनके पास मैं गई फाइनली। शबाना जी आके मेरे मम्मी से मिलके, यू नो, जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे, उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माय मदर्स लाइफ इजियर, कि उनको लगा कि नहीं अकेली नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, संजय सूरी है, ऑनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं, और मतलब उसका तो मैं क्या कहूं कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है।
0: गजब।
1: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ। एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है। मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन, मुझे
0: जबकि 1.5 साल बीत चुका है,
1: हाँ 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है।

0: है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए, बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सबके बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं एआई, बट इट इज एक्चुअली जस्ट द टच ऑफ अ रियल ह्यूमन बीइंग विच हील्स एवरीथिंग। और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके, देन यू विल बी ओके।
1: ये कितना मुश्किल
0: था। ये मुश्किल नहीं था बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था और मेरी बहन आई थी। मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था। एटलीस्ट वन पर्सन इज टेकन केयर ऑफ। मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम, पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुम का अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट। और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माई फिल्म, आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक।
1: प्ले का आइडिया जो शुरू होता है, ये वाली कहानी बताइए।
0: ये
1: इस पूरे दौर से आप
0: बिल्कुल जिस दिन मुझे फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने वाली थी और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूँ उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मिलती हूँ क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट होगा।
0: मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कैसा रिपोर्ट में आया है, पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, एंड आई ब्रोक डाउन। उसने मुझे अपनी पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ कैंसर,
1: वेरी डिफिकल्ट टाइम,
0: वेरी डिफिकल्ट। शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप। और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शाहरुख को अभी लिखते हैं हम इसी के बारे में लिखते हैं,
1: क्या बात है।
0: एंड इमेजिन दैट वॉज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। तो That evening was incredible, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील जो भी मेरे फिल्म में है वो भी आया हमसे मिलने, और that was the last evening। एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
1: देख लेंगे।
0: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि ठीक हो जा, अपने ही सेल्स है which have gone rogue, it's up to me if I can heal। ये मतलब it just went back and forth like that, and that's the day मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले। फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया, और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने।
1: क्या बात है। और इस पूरी जर्नी के दौरान वो अपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया।
0: यस, हमने शोज भी किए अब तो।
1: पहला शो कब कहाँ हुआ था?
0: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ।
1: जी जी।
0: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया, और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है। और फिर आगे और भी करेंगे शोज।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए।
0: हाँ
1: सुनते हैं।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से, इस मुश्किल से गुजर चुके हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक, सर्वाइवर से और ऑनकोलॉजिस्ट से और आम जनता, हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑनकोलॉजिस्ट भी आए थे देखने, और लखनऊ में बहुत फेमस ऑनकोलॉजिस्ट आए थे, और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखानी चाहिए, क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर, अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग, आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो, आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते। और ये चीज हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि, और इमोशनली कह रहे हैं, क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने एक कहानी कही है। पर स्क्रीनिंग करवाना, अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन, आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना, टेस्ट करवाना, ये बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी, आपको पता नहीं है मैंने ये नहीं की, ये गलती की मैंने, क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूँ। सो बट यू जस्ट नेवर नो, ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम। तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो या ये कर लो वो कर लो। हाँ, उन सब चीजों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है, तो प्रोग्नोसिस सबका अच्छा होता है, लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग। ये म्यूटेशंस क्यों होता है वी रियली डोंट नो, साइंस डजंट नो इट। और आपको चीजों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा, और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं, तो करेज कायम रखना, अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है एज अ सर्वाइवर। इतने सारे लोग जो इन चीजों से, इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
2: पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूँ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं ये मानती हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, आज मैं अपने फिल्म को लेकर दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूँ, अपना प्ले कर रही हूँ, अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप कर

0: पाने ले जा रही हूँ. आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप यही कर सकते हो
1: जो भी है बस
0: हियर एंड नाउ. कल का तो हमने ना तो आपको पता है ना मुझे. ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था बट अब तो मतलब ये इंटरनल है. वी रियली डोंट नो. मतलब मैं एक दिन पूरा आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन. द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस.

0: next day I had a terminal illness. How bizarre is that? मेरे दोस्तों को जब पता चला वो सब ये कहने लगे कि टैन मतलब यू नो क्योंकि आई डोंट ड्रिंक आई डोंट स्मोक आई एम नॉट दैट यू नो सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया. आई ईट हेल्दी आई हैव ऑलवेज बीन फिट. मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का. मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट. सो हाउ देन यू जस्ट नेवर नो. तो आप वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवा तह दे. आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त हियर एंड नाउ. मैं जब कीमोथेरेपी पे जाती थी मैं दोस्तों को बुला लेती थी वहां. हमारे अड्डे चलते थे वहां. कोई पोएट्री पढ़ रहा है कोई म्यूजिक सुना रहा है वो हम चुटकुले मतलब ये ताकि वो वक्त निकल जाए. मेरे ट्रीटमेंट का जो पेन है बाल झड़ रहे थे मैंने शेव करवा लिए
1: और वो भी पब्लिक को दिखाया properly.
0: Yes.
1: कि yes, I am going through this.
0: Yes, I lost a lot of weight. I mean, that's a part of my life. I am an artist and I experienced it. I'm experiencing different things and I will express myself through those experiences. और हम यही करते हैं और यही कर सकते हैं.
1: बिल्कुल. तनिषा क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स जैसी कोई चीज होती है लाइफ में वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है?
0: नहीं मत कल का सिर्फ पता है क्योंकि मैं परसों दिल्ली जा रही हूँ. फुल प्लेट की एक स्क्रीनिंग है वहाँ हैबिटेट सेंटर में.
1: तो क्या अगले प्ले की कोई प्लानिंग है?
0: कुछ चीजें लिख रही हूँ लेकिन वो कब आएगी कब होगा ये पता नहीं अभी. बट आई एम राइटिंग सर्टन थिंग्स. फिल्म भी लिख रही हूँ प्ले भी लिख रही हूँ.
1: तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई हैं?
0: नहीं नहीं एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है. अभी बेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ. हमने लिखा है हम एक्टिंग कर रहे हैं. मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो. सो शी हैज डायरेक्टेड इट.
1: ओके वाओ बढ़िया बात है. तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही है मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है उस बीच में क्या चल रहा होता है?
0: हाँ क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है. कर मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल बहुत मजा आ रहा है. तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल. थोड़ा वहाँ रिलैक्स भी हो जाते हैं. बेटी भी सीख रही है स्विमिंग सीख रही है. देन आई स्पेंड टाइम विथ हर. खाना बनाने में मुझे मजा आता है और आजकल थोड़ा सा मुझे अपने डाइट पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ.
1: क्या बनाती हूँ?
0: हाँ मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा मेरा आजकल जो हो रहा है. मम्मी कहती कि अच्छे इसको बुला लो उसको बुला. मैंने कहा कि घर पे लोगों बुलाएंगे खिलाएंगे क्या क्योंकि क्यूजीन तो ये बन रहा है. मेरी वजह से अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन. उसको सब एफर्टलेसली आता है. इतना सुन चुकी है वो कि इस खाने में क्या विटामिन है क्या खाने से क्या डेफिशिएंसी होगी.
1: राइट राइट. सो शी इज एन एक्सपर्ट नाउ.
0: या
1: बिल्कुल.
0: वो एक्चुअली मुझे टीज करने लगती है. अभी मम्मी पता है क्या कहेगी? ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है. इसमें पता है ये विटामिन है वो मिनरल्स है और ये मिलेगा.
1: पहले ही बोल देती. क्या बात है तनिषा. बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे.
0: बिल्कुल. और जाते जाते एक गाना
1: जरूर.
0: जीवन से भरी तेरी आंखें
1: मजबूर करें जीने के सफर फिल्म का ये गाना. इस गाने को इंदीवर ने लिखा है और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जयरंजी हैं.

0: तनिषा बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से और
0: जरूर आइए, स्वागत है।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

వందే మాతరం. ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा. स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी.

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बज चुके हैं, आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 11:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की प्रस्तुति आप सुन रहे थे फिल्म एयरलिफ्ट से। गीत को गाया था अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह ने। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आवारापन से। गीत को गाया है मुस्तफा जहीद ने, बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है प्रीतम ने।

फिल्म बाजीराव मस्तानी से लिया ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे गाया था श्रेया घोषाल और पंडित बिरजू महाराज ने। धुन बनाई थी संजय लीला बंसाली ने। फिल्मी संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म तनु वेड्स मनु से। गीत को गाया है मोहित चौहान ने।

फिल्म एक्शन रिप्ले से लिया ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे गाया था सुनिधि चौहान और ऋतु पाठक ने। बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और धुन बनाई थी प्रीतम ने। फिल्म संगीत की आखिरी प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म रावण से। गायक कलाकार हैं नंदनी शिरकर और धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

0: संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दोपहर के 2 बजने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एआईपीएसआई के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एआईपीएसआई मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में

0: आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा दो मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

रंग दे बसंती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अभी प्रसून जोशी के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था, नरेश अय्यर, मोहम्मद असलम और साथियों की आवाजें थी। यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रुपेली पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम एक जय घोष।
1: छिछोरे फिल्म का गाना है, नक्श अजीज और साथियों की आवाजें हैं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: 1947 अर्थ इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो पंग

0: जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और विजेता पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हमसे मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गाना। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजें हैं।

चक दे इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई की आवाज में। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान का संगीत था। लागा चुनरी में दाग, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में।

लगा चुनरी में दाग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे शांतनु मोइत्रा का संगीत। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, नौ पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक पेज पर। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज की जो इबारत है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें और आंगन में दोनों के नाम का एक पेड़ हो, उस पौधे में सदा प्रेम के फूल खिलें। लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद वो फिर उसी गांव में लौटी, मतलब वो यानी लड़की। पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थी, मगर वो नहीं था। तभी हवा में जैसे उसकी आवाज गूंजी, बूझ मेरा क्या नाव रे नदी किनारे गांव रे। वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था। ये वही जगह थी जहां उसने लिखी थी एक प्रेम कहानी। तो फिर आगे क्या हुआ, यही तो आपको बूझना है। आज आपको पूरी करनी है ये कहानी और दो लाइन में आपको बताना है कि आगे क्या होता है, उसका प्रेमी वापस मिलता है या नहीं, जहां से गाने की आवाज आई थी वहां उसका प्रेमी आया या नहीं, ये आपको बताना है। दो लाइन की एक छोटी सी इबारत लिखिए और बहुत बड़ी टिप्पणी लिखने की जरूरत नहीं है। दो लाइन में बताइए प्रेमी उसका वापस लौटा या नहीं, अगर लौटा तो फिर क्या हुआ। अगर आप बूझ जाते हैं तो फिर ठीक है, वरना हम प्रोग्राम के आखिर तक तो आपको बताएंगे ही कि आखिर कहानी में आगे क्या होता है। अब बहुत सारे श्रोताओं ने टिप्पणी लिखी है, कहानी का निचोड़ लिखा है किसी ने, किसी ने मिलती जुलती कहानी लिख डाली है, किसी ने अंदाजा लगाया है, लेकिन बहुत लोगों को अंदाजा लगाना बाकी है। तो आप जरा बूझिए कि इस कहानी में आगे क्या होता है, वो प्रेमी जोड़े में जो बिछड़ जाते हैं प्रेमी वापस लौटता है कि नहीं, और साथ में वो शब्द भी बूझिएगा जिससे गाने चुने हमने, वो गानों के बोल भी आप बताते चलिए। फिलहाल बताइए गीतकार का नाम, फिल्म है आज और कल, गीतकार का नाम बूझिए, संगीतकार है रवि, आवाज किसकी है ये तो आप बता ही सकते हैं। फिल्म आज और कल। इबारत में जो शब्द है उन्हीं शब्दों से गाने सुनवा रहे हैं।

साहिल लुधियानवी गीतकार। ये हमने पूछा था आपसे, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया। संगीतकार का नाम भी सही लिखा, रवि मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म आज और कल। एक श्रोता ने लिखा, छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में, रिमझिम सितारों का आंगन होगा, बीते हुए दिन कुछ ऐसे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा, पर्वत घर फूल वक्त ख्वाब नाम प्रेम प्रेम कहानी। भाई गाने के बोल भी तो लिखिए, इतनी कंजूसी क्यों? और कंजूसी वहां कीजिए जहां हमने कहानी पूरी करने की बात कही। सिर्फ एक या दो लाइन में आप कहानी पूरी कीजिए कि क्या होता है वो पर्वत, पर्वतों के बीच में, पेड़ों के झुरमुटों के बीच, जब वो वापस लौटती है। एक बार उनके ख्वाब टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जब वो वापस आती है और गाना गूंजता है वादियों में, बूझ मेरा क्या नाम रे, तो उस समय क्या वो उसका प्रेमी वापस आता है या नहीं, ये आपको बताना है। पूरे प्रोग्राम में हम पूछते रहेंगे, आखिर में इसका हम जवाब देंगे, मतलब कहानी पूरी करेंगे। ये अधूरी कहानी हमने दी है आपको। एक श्रोता ने पूरी करने की कोशिश की है, देखते हैं क्या लिखा है। बिछड़ते समय प्रेमी ने प्रेमिका को एक पीला दुपट्टा दिया और कहा, जो इस जगह पहले लौटेगा वो इस पेड़ की ऊपरी शाख पर ये दुपट्टा बांध देगा, तब दोनों को यकीन हो जाएगा कि अभी भी हमें एक दूसरे से प्रेम है और इंतजार है। जब प्रेमिका गांव लौटी तो देखा पेड़ की ऊपरी शाख पर एक नहीं अनगिनत पीले दुपट्टे लहरा रहे थे। क्या बात है भाई, हमारी आंखों के सामने तो सीन आ गया है, कैसे दुपट्टे लहरा रहे होंगे। तो जरा आप अपना निजी अनुभव बताइए कि आपने कभी किसी के लिए ऐसा पीला दुपट्टा, नीला दुपट्टा, लाल बांधा है, या फिर किसी के लिए प्यार का धागा बांधा है। वैसे मंदिर में जाते हैं तो अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए हम धागा बांध कर आते हैं, कभी अपने प्यार की खातिर कोई धागा बांधा है? जरा बताइए, वो अनुभव ही साझा कर सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस तरह की मन्नतों वाला धागा जब बांधते हैं तो ये अच्छी बात है, उसमें दुआओं की बाकायदा तावीज होती है। एक श्रोता ने लिखा है, कदम आवाज की दिशा में बढ़े तो देखा आंगन में लहराते उसी पेड़ की छांव में बैठा वो आज भी उसी के इंतजार में वही गीत गा रहा था। क्या बात है भाई, नजरों से नजरें मिलते ही जैसे सालों की दूरी मिट गई और अधूरा प्रेम हमेशा के लिए पूरा हो गया। आज के शब्द पर्वत चंबा ख्वाब पगडंडी, खूबसूरत गाना और गाने के बोल भी लिखे हैं, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बूझते रहना है हम कौन से गाने सुनवाने वाले हैं। अब जरा हमें हीरो हीरोइन का नाम बताइए, फिल्म है आदमी और इंसान।

0: जो पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गुवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

विविध भारती से यह है कार्यक्रम सुरीला सफर। आदमी और इंसान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था इस प्रोमो से पहले, और आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। धर्मेंद्र और सायरा बानो सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्दी जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत को पूरा करने का हम साथियों को मौका दिया है, बहुत अच्छा लगा आपका नया तरीका। तो हुआ ये कि जिस समय वो उस जगह पर पहुंची थी, उसी समय वो शख्स भी अपनी पुरानी यादों को पुनः जीने के इरादे से संयोगवश वहां पर पहुंच गया था और वही गीत गाकर खुश हो रहा था। दोनों अपने इस गीत को गुनगुनाते हुए फिर से मिले, क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब प्रेम सच्चा है तो मिलेंगे ही ना, मिले मतलब वो प्रेमी जोड़ा मिल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जैसे कि पुनर्जन्म की कहानी हो और अगले जन्म में मिले। एक श्रोता ने ये लिखा है, एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रेमी जोड़ा अर्थात मेरी धर्मपत्नी और मैं स्वयं इन दिनों कश्मीर के पर्वतों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अभी इस समय एक कश्मीर के हॉलीडे होम में रुके हुए हैं, जिसकी खिड़कियों से पहाड़, वादियां, पेड़ पौधे और खूबसूरत फूलों के अद्भुत नजारों का दर्शन कर रहे हैं। और मन बस यही कह रहा है कि धरती पर अगर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और इस जन्नत को बचाए रखने के लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब हरितिमा बचाए रखना है हम सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमें अभी आपके जवाब का और आपकी कहानी पूरी करने का इंतजार है कि देखते हैं कौन सही मंजिल तक पहुंच पाता है, कहानी की थीम को कौन पकड़ पाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप अपनी जो विचारधारा है वो साझा करते रहिए। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का गाना, और ये वही गाना है जिसे उसने सुना पर्वतों की वादियों में और इसी गाने के जरिए अपने प्रेमी को याद किया। तो आपको पूछना है आवाज किसकी है और गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। फिल्म है सीआईडी।

शमशाद बेगम की आवाज थी मजरूह सुल्तानपुरी की बोल थी ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं ने सही लिखा है सीआईडी फिल्म थी। और जरा बताइए कि ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें कि गांव हो पीपल हो और इसमें गांव का पूरा परिवेश हो, ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें नदी भी हो, क्योंकि आज की इबारत में ये शब्द कई बार आ गए हैं। तो नदी, गांव और पीपल वाले अगर कोई और गाने आपको याद आते हैं तो जरूर बताइए, हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेमी अक्सर लौटते ही हैं, कुछ या बहुत कुछ खोकर, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सालों बाद लौटने पर जब उसने देखा सफेद स्वेटर जिस पर गुलाब के फूल की बहुत सुंदर कढ़ाई थी, उसे तुरंत ही याद आ गया उसके द्वारा दी गई प्यार के निशाने उसके प्रीतम प्यारे ने पहनी है। क्या बात है, हमारे श्रोताओं के अंदर एक कथाकार भी है, बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। बहुत सारे श्रोताओं ने एक कथाकार की तरह पंक्तियां लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई

दास्तान हो, मेरे दिल के टुकड़ों में चांद की उदासी छिपी और धुंधली कुछ तस्वीरें लिखी रहीं। कहानी सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नीले पर्वतों की धारा, बहुत ही खूबसूरत छायांकन, पर्वत, झरने, नदियां, आपकी इबारत से बिल्कुल मैच कर रहा है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत अधूरी बताई गई है और लिखा है कि हम पूरी करें। मिलना बिछड़ना नियति में था, जब गाना सुना पुराना सजन मिल गया, फूल खिल गए, मिलन हो गया, गिले शिकवे सब दूर हो गए। प्रेम में बड़ी ताकत होती है, सिर्फ प्रेम में बिछड़ने की वजह गिले शिकवे ही नहीं होते हैं, कई बार मर्यादा भी होती है, समाज भी आड़े आता है, परिवार भी आड़े आता है। तो ये अब हम आपको एक क्लू दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, जरा बुनिए आगे वाली कहानी सिर्फ दो लाइन में, एक लाइन में। हमें पता है कि आप बुन सकते हैं ये कथा। चलिए अब हम आगे बढ़े और आपको सुनवाए अमानत फिल्म का गाना। आपको बूझना है कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। हमें लगता है कि ये फिल्म आप सबने देखी जरूर होगी, तो बूझिए जरा कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है। संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी आप बता सकते हैं।

आज की इबारत में जो कथानक है कुछ निचोड़ इस गाने में है। जब प्रेमी जोड़े बिछड़ते हैं तो दिल से दिल की बात होती है, एक पुकार होती है, एक तड़प होती है, पीड़ा होती है। तो कुछ ऐसा ही ये गाना भी था और हमने पूछा था कि इसमें कलाकार कौन है, मनोज कुमार साधना। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और साहिल लुधियानवी के बोल होते हैं, रवि का संगीत है और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है। फिल्म गोदान, नदिया के पार, नीले गगन तले गाने के बोल भी लिखे हैं बहुत सारे श्रोताओं ने। गांव के परिवेश पर हमने पूछा था कि ऐसा गाना जिसमें नदी है और गांव है तो कोई गाना याद आता है तो वो भी बताइए, श्रोताओं ने वो भी बताया है। और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता लगातार अपनी यादों की गलियारों में विचरण कर रहे होंगे और गाने याद कर रहे होंगे। याद कीजिए, बहुत सारे श्रोता अगर एक ही गाना लिखेंगे तो हम वो गाना जाएंगे भी और बहुत सारे श्रोताओं के लिखे हुए गाने भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मुड़ी तो सामने वही खड़ा था, बालों में सफेदी, आंखों में वही प्यार और हाथ में उस पेड़ की एक हरी टहनी जिसे उन्होंने कभी साथ लगाया था। दोनों कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही वक्त आने का इंतजार करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि रही बात कहानी की तो दिल हमेशा उसे ढूंढता रहता है जो कभी मिला नहीं या मिल नहीं सकता। जब उसने वो गीत सुना तो कुछ पल के लिए वो अतीत में चली गई, पर देखा तो एक छोटी सी पहाड़ी पर एक लड़का वो गीत गुनगुना रहा था। जब उसने पूछा कि उसे ये गाना कैसे आता है तो उस लड़के ने बताया कि उसके पिता अक्सर गुनगुनाते रहते थे और कहते थे एक दिन कोई ये गीत सुनकर उसके बारे में जरूर पूछेगा। क्या बात है भाई, ये तो एक अलग सी कहानी डेवलप हो रही है। तो ठीक है, आज अपने कहानीकार दिल को टटोलिए और लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है, गाने के बोल की लंबी फेहरिस्त भेजी है। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, देखो मैंने देखा एक सपना, काश ऐसा होता, तेरी गली में होता मेरा चौबारा, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी फेहरिस्त है जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहेगी, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मधुमती फिल्म का गाना आ रहा है, आपको बूझना है गीतकार और संगीतकार का नाम। उम्मीद है आप सही सही बताएंगे, जल्द बताएंगे।

मधुमती फिल्म का गाना था। हमने गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था, त्वरित जवाब आया। श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया शैलेंद्र और सलील चौधरी, मोहम्मद रफी की आवाज थी। और श्रोता कोशिश कर रहे हैं कहानी की बात को आगे बढ़ाने की। और अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो बस ये तो बताइए कि अंत क्या होता है कहानी में, प्रेमी जोड़े में वो प्रेमी आता है इस गाने को सुनकर या फिर नहीं आता है। जो भी गाने आज बज रहे हैं, मेरे ख्याल से उस प्रेमी तक इन गानों के जरिए आवाज पहुंचनी चाहिए। तो जो कहानी इबारत की थीम है उसमें, अब एक श्रोता ने लिखा है कि इंसान बहुत कुछ भूल जाता है पर पहला प्यार नहीं भूल पाता, क्योंकि वो उसकी आत्मा और जहन में पत्थर की लकीर की तरह इंगित हो चुका होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर में नदी पहाड़ों के वातावरण में रहने वाले प्रेमियों के मिलने बिछड़ने पर आने वाले गीत सुनने को मिलेंगे। चंबा का गांव और प्रेमी क्या कहते हैं वो भूली दास्तां फिर याद आ गई, बीते दिन वो प्यारे दिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बुझ मेरा क्या नाम रे। बहुत सारे गानों को मिलाया है इन्होंने, एक कड़ी सी बनाई है, अच्छी बात है ये। एक श्रोता ने लिखा है कि वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, हवाएं गुंजायमान है, यही वो जगह है, यही है फिजाएं, यहीं पे कभी आप हमसे मिले थे, यहीं पे कभी हाथों में हाथ लेकर कभी न बिछड़ने का वादा किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी भावुक सुंदर इबारत की परिपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं हम। विरह दर्द को आंचल में समेटे मन की सारी शक्ति बटोरे, वो उस हरे भरे फूल पेड़ के पास पहुंची जो उन दोनों ने लगाया था और बोल उठी, ओ मेरे मनमीत तेरा नाम है अमर प्रेम, तेरी यादों को दिल से कैसे मिटाऊं, तुम्हें भुलाना नामुमकिन है क्योंकि जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार हमने जन्म लिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन जरा आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम, किन हीरो पर किन हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म महबूबा। जल्द बताइए ताकि अगले सवाल का जवाब आप दे सकें। हीरो हीरोइन लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

महबूबा फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और दरअसल इस गाने का जिक्र भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया था, तो समझ लीजिए कि आप सभी की फरमाइश पर यह गाना हमने बजाया। तो आज की इबारत से कोई शब्द आपको सूझ रहा है जिस पर बहुत सारे गाने आपको सूझ रहे तो वो आप लिख डालिए, फिर वही गाना हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हरियाली अमावस्या है, सुरीला सफर में नदी पहाड़ों की बातें हैं और वैसे ही गाने हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का सुरीला सफर। एक श्रोता ने यह लिखा है कि बीते हुए दिन और हालात लौट कर नहीं आते, लेकिन अगर दोनों का प्यार सच्चा और पवित्र है तो बिछड़े हुए प्रेमी फिर से मिल सकते हैं। सच क्या है, बीता हुआ कल जो समय निकल गया शायद वापस नहीं आता, टूटे हुए ख्वाब पुराने जख्मों को भरने में समय लगता है, हालात अगर हालात बदल जाएं तो अलग हुए रास्ते फिर से जुड़ जाते हैं। अब बात बीते हुए दिन की चली है तो चलिए एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। आपको पूछना है किसकी है आवाज और गीतकार का नाम। फिल्म है फर्स्ट लव और बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र भी किया है।

सभी श्रोताओं ने सही बताया, सुमन कल्याणपुर की आवाज है, गुलशन बावरा के बोल हैं। ये जानकारी कम श्रोताओं ने दी है। दत्ताराम का संगीत और फिल्म थी फर्स्ट लव। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि उसने देखा कि गाना एक कुटीर से आ रहा है, जाके देखा तो प्रेमी की बेटी गा रही थी, प्रेमी तो गुजर गए थे। ये एंड लाइन हमारे श्रोता ने लिखी है और सब अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लिखें कि कहानी का अंत क्या होना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आप द्वारा प्रस्तुत शानदार इबारत के साथ सुरीला सफर के लाजवाब कमेंट सुनकर पढ़कर मन प्रफुल्लित हो रहा है। हमारा भी मन प्रफुल्लित हो रहा है कि एक जरा सी कहानी है, छोटी सी, उसमें आप सभी उसमें शामिल हो रहे हैं, उस छोटी सी कहानी को कितना विस्तार दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब जरा बताइए हीरो हीरोइन का नाम और कौन से शब्द इस गाने में आते हैं इबारत वाले, और कौन से शब्द वाले गाने बाकी हैं, जरा ये भी तो लिखिए। फिल्म मेरा नाम जोकर, आपको हीरो हीरोइन का नाम बूझना है। और हाँ, अगर वो प्रेमी मिल जाता है तो फिर वहां पर कौन सा गाना होना चाहिए, जरा ये भी बताइएगा।

आप सुन रहे थे ये गाना, फिल्म थी मेरा नाम जोकर, मुकेश की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और श्रोताओं ने बताया है राज कपूर और सिमी गरेवाल इस फिल्म में होती हैं, इस गाने में। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आजा सनम मधुर चांदनी में हम ये भी गाना होना चाहिए। अब देखते हैं कि वो मुलाकात कैसी होती है, मतलब वो प्रेमी जोड़े मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वहां पर जब अगर वो जोड़े मिलते हैं तो कौन सा गाना होना चाहिए, जरा ये बताइए। देखते हैं, आपने बहुत सारे श्रोताओं ने कोशिश की है कहानी पूरी करने की, अगर वो गाना भी बता देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी आपकी पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आवाज के पीछे गई तो वहां कोई नहीं था, बस हवा थी जिसमें उसकी आवाज और उसके बीते दिनों की खुशबू घुली हुई थी। उसने आंगन के उस पुराने पेड़ को छुआ जिस पर दोनों के नाम अब भी साथ साथ खुदे थे। गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, बस उसकी आहटें दिल के किसी कोने में ठहरी रहती हैं। बरसों बाद जब यादों की कोई खिड़की अचानक खुलती है तो बीते दिनों की खुशबू के साथ एक हल्की सी टीस भी लौट आती है। कुछ प्रेम कहानियां इस जमीन पर मुकम्मल नहीं होती, वे बिछड़ कर आसमान की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। क्या बात है, एक कहानी आपने रच दी है, बहुत अच्छा लगा। अब बुझिए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, फिल्म है किनारा। गीतकार और संगीतकार का नाम पता होगा आपको शायद, तो लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

लिखी हुई दास्तान हो, इसे कृपया आप पूरा कर दें। ये टिप्पणी पढ़ी जा चुकी है, शायद ये दोबारा और तिबारा भी आई है एक टिप्पणी। और अब वो इबारत मैं आप तक पहुंचा रही हूं, जिस इबारत की बात बार बार की इस प्रोग्राम में। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें, आंगन में दोनों के नाम के एक पेड़ हो, लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते। हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद फिर उसी गांव में वो लौटी। पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थी, मगर वो नहीं था। तभी हवा में उसकी आवाज गूंजी, बूझ मेरा क्या नाम रे। वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था। उसने आंखें बंद की तो लगा जैसे बीते हुए दिन फिर उसके सामने खड़े हैं। कुछ प्रेम कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ टूटे ख्वाब उम्र भर आंखों में अपना घर बनाए रहते हैं। अब इस इबारत के मुताबिक तो मिलता है वो प्रेमी जोड़ा, प्रेमी आता है, मिलता है, लेकिन एक बेनाम रिश्ते के साथ। वो रिश्ता ऐसा था कि उसका मिलना न मिलना एक समान था, लेकिन कई मुलाकातें ऐसी होती हैं, कई मुलाकात ऐसी होती है कि आपके जहन में बस जाती है, लगता है कि अधूरा प्रेम भी मुकम्मल प्रेम है। अब

किनारा फिल्म का गाना था, भूपिंदर हेमलता हेमा मालिनी की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। और ये गाना हमें अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि इस गाने में पूरी कहानी निहित थी, इसलिए गाना सुनवाया। और एक गाना अभी जरूरी है जिसका जवाब आप सभी ने नहीं दिया, देखिएगा शायद वो आपका भी फेवरेट सॉन्ग हो और आपने भी वही गाना चुना हो। एक श्रोता ने लिखा है कि सच्चा प्रेम तो वो है जिसमें मिलने की नहीं एक दूसरे के लिए सच्चा समर्पण हो, यही प्रेम की पराकाष्ठा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सफेद कागज पर काली स्याही

तो क्या बताइए, आपने ये गाना आखिर में सोचा था कि ये गाना बजाया जाएगा? वापस फिल्म का ये गीत था और अधूरी मुलाकात को हमने मुलाकात पूरी करवा दी और बहुत सारे श्रोताओं ने यही चाहा भी था इस कहानी में कि अंत ऐसा ही हो कि सच्चा प्रेम हो तो जरूर मुलाकात होती है, प्रेमी जोड़े मिलते हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है कि कभी जिस बरगद की छांव में बैठकर वे घंटे बातें किया करते थे, वो बरगद आज भी इतने सालों बाद भी खड़ा है। उसकी शाखाएं फैल गई हैं, छाया घनी हो गई है, उसके नीचे वो बंसी बजा रहा है और वो दौड़कर अपने पुराने प्रेमी के पास पहुंच गई है। कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती, बस वो संवाद जो होता है मौन की भाषा, वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं और समझ लेते हैं। अब आज के प्रोग्राम का सफर पूरा हुआ, सुरीला सफर आज बस इतना ही। सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान और आज त्रिवेणी में बातें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी, यानी 26 वर्ष हो गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के। वैसे आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 15 से 24 साल की उम्र के लोगों का जो प्रतिशत है वो 16% है, और अगर भारत

का देखें तो 15 से 25 साल की उम्र के लोग भारत की कुल आबादी का तकरीबन 54% हिस्सा हैं, यानी कि भारत एक युवा देश है और दुनिया में भी युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। ये युवा ही है जो दुनिया को बदलते हैं, तरक्की के रास्ते पर ले जाते हैं, नई खोजें करते हैं, नए रास्ते निकालते हैं, नई व्यवस्था बनाते हैं और ये युवा ही है जो दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। पर युवाओं को एक दिशा देने की और जिम्मेदारी का बोध कराने की जरूरत है।

इत्तेफाक की बात है कि 12 तारीख को ही भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, पर अगस्त के महीने में नहीं बल्कि जनवरी के महीने में, क्योंकि वो दिन जो है वो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। यानी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को। जैसा कि मैंने कहा कि ये युवा ही हैं जो बेहतर दुनिया बना सकते हैं, लेकिन किसी भी पीढ़ी के बुजुर्गों से पूछें तो वो यही कहेंगे कि हमारे जमाने के युवा जिम्मेदार हुआ करते थे, आज के युवा तो दिशाहीन हैं। सवाल ये है कि बदलती हुई इस दुनिया में कितने तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं जो ध्यान भंग कर रहे हैं, पर इन तमाम चीजों के बावजूद अगर आप तमाम क्षेत्रों में उपलब्धियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि युवा आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। खेलों में हर रोज बनते हुए रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटीज में लगातार ऊंचे अंक प्राप्त करने वाले युवा, इसके अलावा विज्ञान, दर्शन, इतिहास, हर क्षेत्र में युवा नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, नए कीर्तिमान बना रहे हैं, नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हम

युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों। हम उन पर इल्जाम न लगाएं, हम उनकी गलतियां न निकालें, बल्कि हम उन युवाओं को एक नई चेतना की तरफ आगे बढ़ाएं।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम एक बात और कहना चाहेंगे और वो बात ये है कि हम सबके भीतर थोड़ा न थोड़ा युवा मौजूद होता है। हम सबके भीतर एक जोश है, जुनून है कुछ कर गुजरने का, और इस युवा तरंग में ही दुनिया उपलब्धियां हासिल करती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो है विभिन्न परिस्थितियों को पहचानना और युवाओं के जरिए वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना। ये युवा ही हैं जो दुनिया को एक सूत्र में बांध सकते हैं, ये युवा ही हैं जो हर तरह के भेद की दीवार तोड़ सकते हैं, ये युवा ही हैं जो विश्व व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। बस युवाओं पर विश्वास करें और उनके साथ आगे बढ़ते चलें।

ये थी आज की त्रिवेणी और इसमें हमने बातें की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। अब यूनुस खान को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया, इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावो खेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की।

0: अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार है। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जाँच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
3: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: vv.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने यह बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने यह बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है। इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैली, कल्चरल प्रोग्राम एंड कंसर्ट, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता

0: राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
1: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के 2 मैचों में 1.5 अंक हो गए हैं। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपके रेडियो सखी ममता सिंह। मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

வந்தே மாதரம். ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा. स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी.

0: परख फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहा हुजूर।
4: वो कॉमिक क्रिएटर है।
5: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
4: और विविध भारती पर आ रही हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
5: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने।
6: प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
4: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
5: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस छिपका दी जाती थी।

0: मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये जिद्दी फिल्म का गाना है, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: मैं क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिल बद जाने ये मौसम, जाने ये मौसम।
2: मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा गा।

0: तू है गुलजार मेरा, मैं तेरी शबनम, जान मेरे मौसम, जान मेरे मौसम,
1: मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिल।

जिद्दी फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं बहू बेगम फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत है। सुनिए प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे लाल पत्थर फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। नीरज की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत था। हमने उद्घोषणा की थी बहू बेगम फिल्म के गाने के लिए, लेकिन हम माफी चाहते हैं, वो गाना हम नहीं सुनवा सके, हमारे कंप्यूटर जी थोड़े से नाराज थे। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफर खत्म होता है। आज्ञा दीजिए ममता सिंह को। नमस्कार।

0: ये संभल जाती है। और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं ना दीपा, उन्हें मालूम होता है कि भाई अभी बहुत जगह पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई है
1: जी।
0: तो पानी उबाल कर पीना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए। यानी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो हमें रोज अखबार पढ़ते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही देखो ना, ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यंजन खाने का और बनाने का बड़ा मन करता है। अच्छा चलिए सखियां, बनाने का भले मन नहीं करता होगा लेकिन खाने का तो करता होगा ना।
0: मेरा तो मन करता है।
1: बिल्कुल, तो वैरायटी सबको चाहिए, एक विविधता होनी चाहिए ना, सिर्फ अपने जीवन में खाने में भी।
0: हाँ, और है ना वही तरह के जब हम खाने खाते हैं ना, तो बच्चे क्या बड़े बूढ़े सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अरे वही बना लिया। तो ओट्स जो होते हैं ना प्रोटीन से भरे होते हैं, तो उसके व्यंजन, बहुत सारे व्यंजन हमारी सखियों ने, हमारे श्रोताओं ने लिखकर भी भेजे हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसी ने डोसे का लिखा है, किसी ने उपमा लिखा है, तो किसी ने खीर लिखा है। तो आप भी लिखकर भेजिए कि आपके घर में ओट्स के व्यंजन बनते हैं और नहीं बनते तो क्या बनने चाहिए।
1: बिल्कुल, और देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन मेहनत का फिर फल भी तो बहुत मीठा होता है।
0: मीठा होता है।
1: और जब सारे खुश हो जाएंगे और उस मेहनत का जब रंग निखर के आएगा, तो फिर देखिए न सिर्फ हर दिन हमारा जीवन भी सवर जाएगा। और यही शब्द है हमारा आज
0: मेहनत। तो आज का है शब्द हमारा विचार आपके, इसमें मेहनत है। यानी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, बिना मेहनत के हमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती।
1: बिल्कुल। और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं, उन्हें लगता है साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जो अनुभवी महिलाएं हैं वो कहती हैं तुम जितनी देर में ड्रेस पहनोगी हम उतनी देर में साड़ी पहन लेंगे,
0: चट से पहन लेंगे।
1: तो साड़ियों का अपना एक सुंदर संसार है। और एक महिला जितनी खूबसूरत साड़ी में लगती है, किसी अन्य परिवेश में, परिधान में शायद कम लगती है। ये आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा सखियां, कि साड़ी पहनना आसान है या ड्रेस पहनना आसान है? और अगर आसान ड्रेस है तो खूबसूरत किसमें ज्यादा दिखते हैं?
0: श्रोता भाई भी बताएं कि महिलाएं किस ड्रेस में यानी किस परिधान में ज्यादा सुंदर लगती है
1: जी।
0: तो खंडुआ साड़ी ओडिशा के बारे में हम जानकारी देंगे। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारे बहुत सारी सखियों ने भी इस विषय में मैसेज लिखना शुरू कर दिया है। साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो सारे युवाओं को भी हम बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
1: बिल्कुल, उन सभी को, उनकी ऊर्जा को सलाम। और उन्हें ये एक सीख भी देते हैं कि अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक पथ पे आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को संवारते चले
0: जी।
1: और अब हम क्या करें,
0: गीत सुनते हैं।
1: चलो।

0: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सारी सखियां सहेलियां और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
0: बिल्कुल आपका जो नमस्कार है सभी ने उसे
1: स्वीकार लिया है।
0: और हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे हैं और हेल्थ का ध्यान रखना सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम में देखिए ना घर घर में हम सुन रहे हैं किसी को नजला हो गया है किसी को
1: खांसी
0: हो गई है कहीं बुखार है तो ऐसे में अगर हम पहले से ही थोड़ा सा अपना ध्यान रखते चलते हैं ना तो ये जो बदलते मौसम में तबीयत जो खराब हो जाती है ये जरा संभल जाती है।

0: सोनाली, कहाँ खोई हुई हूँ संदेशों में।
1: यहाँ आने के बाद में हम दोनों नहीं होते हैं दीपा, हमारे साथ में इतने सारी श्रोता, इतनी सारी सखियाँ जो घर में सुनते हैं और हम उनके संदेश पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो संदेशों के माध्यम से बहुत सारी हमारी सखियाँ इस वक्त हमारे साथ हैं,
1: जुड़ी हुई है। और आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
0: बिल्कुल,
1: तो युवा जो होते हैं ना, किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके भीतर असीमित ऊर्जा, कुछ नया करने की ललक और दुनिया को बदलने का साहस होता है। और इसी ऊर्जा और सामर्थ्य को सम्मानित करने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये दिन दुनिया भर के युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी को रेखांकित करने का एक साझा मंच है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे देश की हम बात करें तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दिन और भी खास और जीवंत हो उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। तो भारत का युवा जो है उसको हम केवल जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड ये नहीं हम बोल सकते, ये आंकड़ा नहीं है, बोलो ये नहीं हम मान सकते, बल्कि देश के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का मुख्य कारक भी हमारे युवा हैं।
1: ये तो बात आपने बहुत सही कही दीपा। और आज का भारतीय युवा केवल अवसरों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और नए विचारों के जरिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक या तकनीक से लेकर सामाजिक क्रांति तक भारत का युवा हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक देश के युवाओं का ये संगम इस बात का प्रतीक है कि जब युवा सशक्त होता है तो वह न केवल अपने देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है।
1: बस युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही
1: कि ये जो महत्वपूर्ण वर्ष है ना, ये जिंदगी में बार बार नहीं आती।
0: बिल्कुल, और ये ऊर्जा भी बार बार नहीं मिलेगी, है ना, इसे संगठित करके रखना होता है।
1: तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना, उनका जीवन उज्जवल हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और सबसे जरूरी बात है मेहनत।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और ये वो सुनहरे वर्ष हैं जहां आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है, और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनकी मानहानि ना हो या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गांव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर हैं, तब भी माता पिता को ये लगे जहां भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है।
1: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी सोनाली। इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है, थीम है अलग परिस्थितियां, समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो, लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
1: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है। और आप क्या किया जाए,
0: आज थोड़ी हल्की सी फुहार यहां पर

0: चलो चलते हैं
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। ओडिशा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहां की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो ओडिशा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंद गांव में बुनी जाती है।
1: और दीपा इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इकत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग करके पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंद कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिजाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और मंदिर की आकृति यानी टेंपल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है
0: जी। और सूती खंडुआ उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है। ये वाली साड़ी हल्की होती है, ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है
1: या चुभ रहा है,
0: वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियां रोजमर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
1: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसकी बॉडी या आंचल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता है। और एक है टसर खंडुआ, इसमें टसर सिल्क का उपयोग किया जाता है। इसमें साड़ी को एक प्राकृतिक हल्का सुनहरा और मैट टेक्सचर मिलता है।
0: अब देखो ये इतनी तरह की साड़ी है, तो अगर आपको टसर जो फैब्रिक है वो पसंद है तो उसकी साड़ी ले सकते हैं, अगर कॉटन पसंद है तो वो ले सकते हैं, सिल्क पहनना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। आप चाहे तो इस साल की दिवाली या बड़े उत्सव, कोई बड़े उत्सव के लिए भी इस साड़ी को ले सकते हैं। तो प्राइस रेंज अगर आप बोलें कि किस प्राइस में आती होंगी, तो 2500
1: खरीदी जो पहनने पर सुंदर दिख रही थी। खंडुआ साड़ी का नाम पहली बार सुन रही हूँ, आपसे जानकारी मिलेगी, जानकारी भी मिल चुकी है।
0: बिल्कुल। और हमने जो पूछा था ना कि क्या पहनना ज्यादा पसंद है, तो हमारी एक सहेली लिखती है कि मुझे साड़ी पहनना बेहद पसंद है और पहनती भी हूँ, पर अब ड्रेस पहनना शुरू कर दिया है। ड्रेस पहनना ज्यादा इजी लगता है, झट से पहन लो और चल दो। मुझे भी साड़ी में खूबसूरती ज्यादा दिखती है, और सलवार सूट हो या कोई भी ड्रेस हो, अगर सलीके से पहना गया रंग उम्र और समय के अनुसार तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। पर साड़ी की बात तो कुछ और निराली है, तो भाई साड़ी जीतती जा रही है, जीत तो साड़ी की हो रही है।
1: और एक सखी ने लिखा है, आज हरियाली अमावस्या है, आज भी महिलाएं खूबसूरत रंग बिरंगी हरी साड़ी चूड़ी में सज धज कर मंदिरों में, बाजारों में दिख रही है। साड़ियां, चूड़ियां और राखियों की खरीदारी चल रही है। मेहंदी लगवाने की भी भीड़ लगी हुई है। गर्मी है फिर भी सभी को अपनी बारी का इंतजार है।
0: वहीं हमारे एक श्रोता भाई ने लिखा है, जी ये डिपार्टमेंट तो केवल माताओं बहनों का है। भाई बात तो सही है, लेकिन खरीदने तो जाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आगे लिखते हैं कि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे। आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
1: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं। पर देखा है ना, आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं, कुर्ते बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं। तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई है वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह, धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है, निराला है। जैसे कि इस गाने में हमारी हीरोइन देखिए क्या कह रही है।

ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: सोनाली, अब एक वक्त हो चला है अंतराल का,
2: तो लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई। कितना सुंदर मैसेज है, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूं और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूं। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूं तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूं, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं।
1: जी ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की भी होती होगी। हम जो हमारे प्रिय हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी कोई पहनी हुई चीज सदा हमारे पास रहती थी, एक धरोहर के रूप में
0: हमारे साथ रहती है
1: और याद उनकी ताजा बनी रहती है। तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
0: और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
1: जी,
0: कि फला कंपनी की जो साड़ियां है वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती है, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और खासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
1: सोनाली आपका इशारा समझ गए हम, मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है,
0: और उसमें सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया देख ले कि कहां सेल लगा है।
1: हम महिलाएं यही करती है ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती हैं जहां पे एग्जीबिशन कहां चल रही है, सेल कहां चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले हैं।
0: नहीं यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है, पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सारा पेपर सारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना अखबारों से हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है और बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा, कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी अगर उसमें ऐसा होता यानी कोई मेन होल में गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था, तो हमें बाहर निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल में झुककर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी

0: से जाना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहां बहुत दूर है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सब कुछ पता चलता रहता है। यहां तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियां भी हम प्राप्त कर पाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के जमाने में सबके लिए, उम्र कोई भी हो, बेहद जरूरी है।
0: वैसे दीपा, अखबार केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है बल्कि वर्तमान समय का सजीव दस्तावेज होता है। इसमें मौजूद हर तरह का समाचार हमें समाज, देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है। और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं वे केवल घटनाओं से परिचित नहीं होते बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है। कहीं विज्ञान की नई उड़ान है, कहीं खेल जगत की नई विजय गाथा है, कहीं संस्कृति की सुगंध है, तो कहीं समाज की चुनौतियों का आईना हमें नजर आता है।
1: ये इसी बात पर देखो एक संदेश आया है। ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूँ और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूँ। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी फ्रेश होता है।
0: ये बहुत अच्छी आदत है। ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए। जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिमाग की नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, तो क्रॉसवर्ड जरूर हमें बढ़ती उम्र के साथ करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि स्कूल में किताब पढ़ने का शौक हुआ स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें, कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उनको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया जो अब तक साथ है। कितनी अच्छी बात है। वही एक साथी कहते हैं कि अखबार पढ़ना सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था। मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो, इससे इंग्लिश अच्छी होती है। बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं जो एक बेहतरीन दिनचर्या है, जो न सिर्फ देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपदी लेख जो हम अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, पर लेकिन अखबार सत्य, संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
0: एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ। सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ और ज्ञानवर्धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती
1: हूँ। बिल्कुल। और ये संपादकीय जो संपादकीय लेख जो है इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पे लिखना है तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
0: और आप क्या करना है,
1: हमें तो गीत सुनना है।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो भाई अखबारों से यारी करनी है और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन स्क्रोलिंग से करना है। उतनी नहीं, अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है। जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल जाए तो पढ़ लेते हैं तो मजा नहीं आता है उस अखबार। मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था, दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे, बस बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है।
1: एक और साथी कहते हैं,
0: जी
1: पढ़ना चाह रहे
0: हैं, बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है, मेहनत से व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
1: एक कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
0: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं, मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने

0: हमें पहुंचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता। एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती हैं, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती हैं। हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो जरूरी करनी चाहिए। कभी कभी परिणाम देर से मिलता है पर मिलता जरूर है।
1: बिल्कुल सही कहा
0: और धन्यवाद कहते हैं।
1: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं।
0: इतने सुंदर मैसेज।
1: बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी असमंजसता हमारे सामने आ जाती है। और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती, जैसे कि इस गाने में ये सुंदरता है।

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मान

0: दीपा
1: जी,
0: हमारे इतने सारे श्रोताओं ने, सखियों ने मेहनत पर भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है, मेहनत के बिना कोई भी सपना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसान तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है तभी धरती सोना उगलती है। विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता है तभी सफलता उसके कदम चूमती है। कलाकार बार बार अभ्यास करता है तभी उसकी कला में निखार आता है। यानी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत

0: छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। याद रखिए, किस्मत का रास्ता दिखा सकती है, अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह से एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि कभी कभी हम मन में कुछ बातें ठान रहते हैं और कि अमुक काम करेंगे, पर सिर्फ मन में ही सोचते ही रहते हैं और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
0: और एक साथी कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है, और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले, पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
0: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है।
1: बात तो बिल्कुल सही कही,
0: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना उसमें 1 घंटा चाहिए। कि उसमें जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज के जिस चीज में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है 1/2 कप, पानी या दूध ले सकते हैं आप 1 से 1.5 कप तक। सब्जियां लेनी है, प्याज, टमाटर, गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं। तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा, हल्दी, नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भूने, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी, नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भूने। अब पानी या दूध डालकर उबले, इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ, इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की, जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले, आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। और इसी आटे से आप नमकीन पराठे, रोटी बना सकते हैं। ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए, ओट्स का चीला बनाया जा सकता है। ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची की पेस्ट डाल दे, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के और उसके चीले बना सकते हैं। गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो एक और संदेश देखिए, ये एक छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन, दोनों मिक्स कर लें। इसमें लौकी, प्याज, टमाटर, हरी धनिया, आप चाहे तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं। घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और जब ये चीले बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है। है ना,
0: बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और इसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया।

0: भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है, है ना।
1: बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और उसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया। अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं, तो बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। ऐसी पौष्टिक चीजें जब घर में बनती है ना और जब घर उस खुशबू से महकता है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक श्रोता ने, कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें। आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है। इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
1: और अब क्या करना है,
0: देखिए क्या करते हैं।

0: दरिया किनारे एक बंगलो बखोरी गई जो गई। दरिया किनारे एक बंगलो बखोरी गई जो गई।
1: अरे जाई की कहाँ है पोरी, अरे जाई की कहाँ तेरे दीजे ये पोराई जो गई।
0: आई जो

அரை தூர் செய்கில்

बिहार

0: गुड़िया मैपल सिरप डाल दिया जा सकता है और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं। सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

दीपा हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीजें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज या मीठेपन के लिए उसमें शहद।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं नवी में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
2: बिल्कुल,
1: कि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था।

0: अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा फिर जैसे कार्टूनी में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर, और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं ये मन्ना देखी आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स है उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का, मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन आदमी काम का। लेकिन वो छह महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो छह महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने छह महीने से उंगलियों पे गिने, छह महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिना। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि छह महीने ऐसे नहीं होता है, छह महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने छह महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
0: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो छह महीना अगर काउंट करेंगे तो वो सात महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन छह महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉइंस बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी छह महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट,
0: हाँ वो चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई मेरे के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया
0: जी,
1: है ना। और ये यात्रा मुंबई तक कैसे आई?
0: रेडियो से रेडियो। हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहां कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहां से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा डेढ़ घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के सीडी पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है,
1: और
0: हर 1 मई के 1 मई में उनको कॉल किया करता।
1: क्या बात है, मैं भी
0: तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जब फोन कटा मैंने देखा मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी, अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैं ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा।
0: तो

0: मन्ना डे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा, जब हम मन्ना डे साहब के बारे में सोचते हैं तो, तू प्यार का सागर है, सीमा फिल्म, शंकर जयकिशन,
1: हाँ बिल्कुल,
0: शैलेंद्र,
1: सुनते हैं ये गाना।

0: ये सब एडवेंचर चल रहे थे, इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए. बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुली फालतू.
1: बिल्कुल.
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैं रेडियो में कर रहा था. मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री करवर के कुछ एक
1: बना रहे,
0: 10-12 मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे. तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं ये करता हूं. तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा. मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहां आया. यहां आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी. तो मैं यहां आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बंबई में. विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया. वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो क्या करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो. वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे.
1: बिल्कुल.
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम. राजेश देवराज हेड राइटर होते थे. तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था. मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं. मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा

0: दार बन गया था मेरे दिमाग में देवी कौन होंगे। बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। तो, और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा। किकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, दो तीन चार बार मिले उसके बाद। अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए। तो वो सब करके मैं यहां से गया, और मुझे लगा कि मुझे बंबई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहां से मुझे ऑफर थी, और ठीक ठाक ऑफर थी। तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया, और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ। तो रेडियो में फिर बहुत सारी मजेदार चीजें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीजें मैं टीवी में करना चाहता था, वो मैं फिर रेडियो में करने लगा, और मेरा पेट भर गया उस चीज से। 4-5 महीने में मैंने कहा अगर यही करना है तो क्या मजा नहीं आएगा। हाँ, ये वही सर्कल वाली बात होगी ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था, और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे, और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था वेंकटेश ने,
1: वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर,
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया है, तो सैंडविच खाते हैं चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया, उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं, लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे हैं
0: हम लोग, तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहाँ पे, बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी, हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं, पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं, तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक 2-3 एपिसोड दिए, उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज में खुद ही रिकॉर्ड किया, और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में, और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस। मैंने कहा ये प्रोमो हो गया, इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है, तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अगर मैं यहां नहीं आऊंगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर ये था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था। और लोग सब, हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे, और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए, और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

दुनिया माने मुर्रत गोली मारो लड़के जीना है कोई जीना यारो यारो बेदा जान रो फिदा दुश्मन को ये पता तो दुश्मनी है क्या मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्मा मम्म

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में, तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहां प्रोमो करने के लिए गया, वहां बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूं। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
0: ऐसी बोल दिया।
1: हाँ, मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आया तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
0: ओके।
1: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
0: वाह वाह।
1: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास 2 शोज है, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जदोजहद में गुजरने वाले हैं। ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था। तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया कि, तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विद अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
0: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे प्रॉपर, वही शो की बात हो रही है,
1: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के 2 शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये 2 मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था।
0: Right.
1: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूं, मैं सब करना चाहता था। मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा। और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस

0: उनके साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के फुटेज लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है? तो मैंने कहा मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे दो तीन बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया। वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको,
0: इसको कुछ तो पता है अगर सब पता नहीं भी है तो। तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे। धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया। पहले भी देखी हुई थी और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें कि कैसे टिकर आएगा। टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बच्चे थे इंडिया, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं। तो हमने ऐसे काउंट डाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते हैं ग्राफिक्स में।
1: अच्छा
0: था ये पंच। तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि टिकर विकर नहीं थे पहले। वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मसी नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था उनमें। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो सुमराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, सुमराई कला। मैंने कहा सुमराई कला कैसे सीखे, रैपिड एक सुमराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे एड। तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताया कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे। वो एक फेक एड आएगा उसके बाद असली एड
1: आएगा।
0: तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में 26 एपिसोड में। 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने,
0: इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई। फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, वीएफएक्स भी किया। मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगाओ। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी, मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं। मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना।
1: बिल्कुल,
0: वो शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूं और उस सेट पे ज्यादा रहा हूं। तो इस तरीके से ये शो बना। ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए। तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीजों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कानून
1: छूट जाते हैं,
0: लूज ऐसे ऐसे छूटते हैं जो बाद में आप ना, मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें।
1: बिल्कुल।
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहे। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया। तो 2 शोज हमने किए, उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और 2 एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो

0: जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीजें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा, प्रोजेक्ट्स क्या हैं वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंका।
0: मेरी जंका, मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था, मेरी जंका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बोल बेबी बोल,
1: वो सुनते हैं
0: जी।
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स, टेकिंग द चांस टू मेक यू डांस। You will move your feet and groove. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
3: No! No!
2: Samba?
3: No! No!
2: Rumba?
3: No!
2: Samba?
3: No!
2: Tequila?
3: No!
2: Tango?
3: No!
2: Charleston?
3: No!
2: Polka?
3: No!
2: No!
3: No!
2: Phir kya ho?
3: One.

0: बहुत बहुत केयरलेसता में। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लिशे है, सब हजार बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो वन ऑन वन पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स
0: तो वो किया हमने, अस्सा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पर हमें रिस्पांस मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो एस एस राजामौली के साथ किया, मतलब बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे, तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा, तो लोगों के बीच में वो एक उत्साह बना रहेगा माहिष्मती के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे, वो डॉट 11 बजे आए। उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट,
1: बिल्कुल
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला इधर आओ इधर आओ, मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने अपने फोन पे मुझे अमर चित्रकथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो अमर चित्रकथा है, उसके 2 संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजामौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी, उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: में कहीं कहीं काम आती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स कहीं छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला, हमने वो शो किया, पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीजें हुई, एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया, मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज थी कि मैंने मेरे जो हीरोज हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजामौली साहब के साथ काम कर लिया, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया, तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो।
1: बिल्कुल।
0: शोले कर ली थी तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब नहीं मिलता था, तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में दौड़ता रहूंगा। तो मैंने लाइव एक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया, मैं निर्देशक बनना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूंगा। इस बीच में एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो, वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मिडिल क्लास ह्यूमर था, मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद है, तो ये उस स्पेस में था और समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था, तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शो
1: ज्यादा हो,
0: बहुत सारी चीजें आ गई हैं, उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते में वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूंगी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें।
1: ठीक है। इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, अनलिमिटेड शो है, 5 एपिसोड का वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा, मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी खत्म किए करके जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है, 1 नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूं इस साल मैं 2 किताबें और करूं।
1: अच्छा
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बनके

0: रेडी है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं
0: मुकद्दर का सिकंदर।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: टाइटल ट्रैक कल्याण जी आनंद जी इंदिवर।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।

0: आलोक, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा. लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है. एक साइकिल है, चल रहा है, तो ये खत्म होता है और फिर आता है. तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनाने शुरू की हैं. हम भी उनमें से एक हैं. हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है. तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल. तो वो कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है. और एक दूसरी चीज जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में. और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है. अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे है ना. स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है. तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब. तो अब दो चीजें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं.
0: बिल्कुल,
1: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में. बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने. डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म, एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है. तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है. लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है. चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिनपे कुछ बन सकता है. तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनपे मुझे लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी. मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी.
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया.
1: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है. मुझे लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है, जो इवॉल्व वो हो रहा है. बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का दौर है.
0: बिल्कुल. तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी. आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की.
1: शुक्रिया रिमांस भाई. मैं जैसा कह रहा हूं कि मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूं, आपसे मिलना भी होता रहा है. मैं यहां आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है. तो मेरे लिए घर वापसी है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. हाँ,
1: और क्या कहूं मैं.
0: बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं.
1: जी.
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग. चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले.
0: आज के

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गुवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। हमारी शाम की सभा में सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। शाम के 5 बजे हैं। आइए आपको अवगत करवाते हैं हमारी आज शाम की और कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण से।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से प्रसारित कार्यक्रम देशगान 5:10 पर। वहीं 5:40 पर समय रहेगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी का। महिला श्रोताओं का कार्यक्रम वैरानी बात का समय रहेगा शाम 7:00।

शाम 5:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पर्सन बिहाइंड द स्टोरीज। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 5:30 पर और रात्रि 9:00। जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7:30 पर।

हमारी शाम की सभा में समाचारों का समय कुछ यूं रहेगा। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। वहीं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार। हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में रामचरितमानस गाना आप सुन पाएंगे प्रातः 6:30 पर। वहीं किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती निवाद आप सुन पाएंगे प्रातः 6:45 पर।

प्रातः 6:50 पर समय रहेगा कार्यक्रम वागड़ी लोक संगीत का, और वहीं कार्यक्रम वातायन आप सुन पाएंगे प्रातः 7:20 पर। दिली जज्बातों का कार्यक्रम कुछ दिल से आप सुनेंगे प्रातः 8:15 पर। वहीं कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 8:45 पर। कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 8:45 पर। वहीं सुगम संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 9:10 पर और प्रातः 11:00। प्रातः 9:15 पर आप सुनेंगे स्टूडियो से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम कस्टमाइज्ड। वहीं प्रातः 9:30 पर समय रहेगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 11:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे प्रातः 7:30 पर, प्रातः 10:00 और दोपहर 12:00।

अभी आप सुन रहे थे हमारे स्टूडियो से प्रसारित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण जो यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं देशगान।

Quran.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से कार्यक्रम देशगान, जो यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 होने को हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरीज़।

0: आकाशवाणी है। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण हैं जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। और जब इन मूल्यों में नारी शक्ति का अदम्य साहस और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जुड़ जाता है तो एक प्रेरक गाथा बन जाती है। ऐसी ही प्रेरक गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे IASP त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की। तो ये अभियान कैसा रहा, क्या चुनौतियां रही, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का। तो सबसे पहले जब आपको एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड
2: कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या? तू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे। तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखने की ये चीज क्या होती है।
1: विभा जी और वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफर करना था। तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला?
3: तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है। पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए। रही बात भाई एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है। और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है
1: जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ। प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
4: एक्चुअली ये जो एक्सपीडिशन है इसकी प्रिपरेशन 3 साल 4 साल पहले स्टार्ट हुई है। तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपीडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश। तो इनिशियली इट वॉज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे और हम 42 टोटल थे फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, जिन्होंने 3 फेजेज ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कम्प्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी एयरफोर्स नेवी। पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था,

0: पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए. तो लेट एक्चुअली बिकॉज इट इज अ मैसिव थिंग, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड. तो इनिशियल फियर तो रहता ही है.
1: आपसे जाना चाहूंगी विभाजी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
2: देखिए अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी. हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था. उसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक, शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो. तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेज जिस तरीके से हमको ट्रेन किया जाता है, यस वो काफी हद तक हमारे काम आई, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है. लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई. जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना, दौड़ना, रस्सी चढ़ना, पुशअप, पुलअप, मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रांग बनाया गया कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना आए. फिर दूसरा, ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो, आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है. फिर रही बात, हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी, तो इसका मतलब हमें

0: है, ये एक एक चीज हमें पढ़ाई गई। और उसके बाद टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ टीम आप वहां पे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई।
1: जी स्पॉन्टेनिटी जो वैशाली आप को फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें, लेकिन जो सबसे जरूरी होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको, तो मेंटल ट्रेनिंग भी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपेडिशन में?
2: बीइंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड और वेयरिंग अ यूनिफॉर्म इटसेल्फ, बी इट आर्मी नेवी और एयरफोर्स, मेंटली स्ट्रांग होने की हमें ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाती है, तो यहाँ पे भी वही चीज काम आई। थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कि इंड्योरेंस और स्टेमिना, कि महीने महीने तक कुछ ना दिखना, कोई कलर ना दिखना, कोई पक्षी ना दिखना, इंसान ना दिखना, और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी, और उसकी बात पूरे एक डेढ़ दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके। तो वो चीज ट्रेनिंग करते करते, सेलिंग करते करते बढ़ाई गई। अकेलापन फील होना, उसकी जो फाइट होती है वो हमने सेलिंग करते करते ही सीखी। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील की था, बाकी सेम।
1: मेजर प्राजक्ता, आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी मेंटल ट्रेनिंग भी, फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने इतना आत्मविश्वास बनाए रखना नहीं हम कर लेंगे, तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी?
3: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज जब उठते हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम, ऐसा नहीं था। बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे, रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन इतना फटीग है हमें, एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, इनफैक्ट पहले भी, बिफोर फ्लैग ऑफ हुआ हमारा, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं, बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था, एक ही गोल था, सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू। इवन अगर आप एक दिन मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो आई नो कि बाकी है हु विल लिफ्ट मी अप।
1: टीम वर्क काम आई इस एक्सपेडिशन में। विंग कमांडर विभा जी, जैसे उन्होंने कहा कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, और हम सभी के जहन में ये है कि आप लोग एक शिप में गए हैं, बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी, तो क्या वाकई में ऐसा था या आपको और भी कई इसको लेकर भी, उठने जागने सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
4: जनरली हम फोर्सेस में तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है, हमें एक अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, तो शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहां आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है, हमने कहा कोई कुक नहीं होता है। हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी

0: हमारी पूरी दुनिया थी और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज्यादा जगह है। और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी है, तो जब समुद्र की लहरें और विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है। तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना खाना पीना जागना कुछ भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है। एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था। धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे रहके सीखा।
1: जैसे खाने के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग गोने से हैं, तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
0: फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसा नहीं कि खाना बनाना चाहते, वो उनका पैशन था। तो यहाँ पे जो प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा। तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा आज क्या बनेगा। प्राजक्ता जी ने बोट में समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और हम
1: दिन बन गया,
0: दिन महीने बन गए।
1: ये है मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं, तो जैसे सी सिकनेस की बात की तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया, तो कोई वहाँ पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
2: हमने मेडिकल वाइज

0: रही है और इट इज योर मंथली साइकिल. दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है हु इज ट्रेन ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रही है लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना. वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था. वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं. शी यूज टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है. प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं है जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए.
1: तो आप कुल 9 लोग थे, ये जो प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था? क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
2: तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे. उसमें से एक मतलब एवरी डे देयर वाज अ मदर ऑफ द बोट. तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे. बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स मतलब 2-2 ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी. तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी. एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक जैसे कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन समथिंग और मैम इज स्पेशलाइज्ड इन समथिंग. वी ऑल नो एवरीथिंग. तो हमको सब चीज में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है. तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था. इट वॉज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए.
1: बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ किसी तरह की दिक्कत ना आए.
2: यस.
1: तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था तो आप किन किन जगहों से गुजरी, कहाँ कहाँ से गए?
3: देखिये जब हम सर्कम नेविगेशन की बात करते हैं तो सर्कम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं. उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था. तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वहां पे हमें केप लेन क्रॉस करना था. ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल. फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल मिटिल्टन न्यूजीलैंड में. लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉल में फंस गए और हमारा सेल फट गया और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे. तो लकीली हमने एक पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहां पे हमने हॉल्ट लिया. वो अनप्लान था बट वहां पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया, फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ. न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना ब्यूनोस आयरिस क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है. उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में. फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन.

0: टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए। तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे आके खत्म हुआ।
1: रेखा जी आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आपने दो बार इक्वेटर को पार किया, सदर एक बार सदर्न हेमिस्फेयर फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन रही होंगी आपने, बहुत ह्यूमिड भी, गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा, तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुखी चल रही थी?
0: अभी भी जैसे हम आए हैं कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो एक साल सेलिंग करके आ गए बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है, तो हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ। हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम दो दो लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में गए थे वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, 10 नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज। जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे। और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी, हमारा सेल फट गया था, तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी और हुक्स हमने जब ग्लव्स से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था 3 ग्लव्स से। हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन्न, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन्न हो जाए। और कहते हैं ना सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन्स पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नम हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम,
1: मतलब एक तो पानी की लहरें, हवा और हवा और इसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए निशानी जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
2: नहीं नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्ते हफ्ते बारिश हो रही थी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय पिला देता है। ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो तो आप देखोगे क्या, तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि बारिश का पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही। तो आप तो मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था।
1: तो मीटर प्राजक्ता आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी?
3: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था, तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहां पे हमने पहुंचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली

0: बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते
1: एक्सट्रीम देखा है हमने एक्सट्रीम मतलब जीरो हवा भी देखी है जैसे उन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं पानी हमको पीछे धकेल के ले गया और हमने 60 नॉट्स ऑफ विंड मतलब ऑलमोस्ट 100 प्लस किलोमीटर पर आर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी और एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना और इतनी सर्दी भी देखी है कि हम हमारे हाथ जम गए।
0: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का एडजस्टमेंट टू गिव अ स्मॉल लिस्टिंग। सदर्न ओशन में जब हम थे मैम ने जैसे बताया इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे। आई हैव सर्व्ड इन थर्ड स्टेज हाई अल्टीट्यूड उधर भी बहुत ठंडी होती है। आई हैव सर्व्ड इन लद्दाख वहां पे मैंने ठंड देखी है बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू व्हाट वी विटनेस्ड हियर। एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊं हमारी आउटर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था। हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे। आप बताएं एस्कॉर्ट लीडर वैशाली की बट नाउ वुमन आर दे आर अनस्टॉपेबल ठीक है तो बीइंग अ वुमन व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड।
2: मैं फ्रेंकली ये बताना चाहूंगी नॉट टू एग्जैजरेट मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है। जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज हमने करी है। हाँ अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि मैं पीरियड्स में कैसे करूंगी मुझे कंफर्ट जोन चाहिए और नहीं मुझे नहाना है अगर इफ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटेलिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटेलिटी ऑब्वियसली इट बी इट सेविंग और एनी अदर एक्टिविटी आई विल नेवर बी एबल टू डू इट। बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल। इट इज जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से वो हमने कंटिन्यू रखी।
1: अब इनका मान लो जैसे आप लोग वायुसेना से हैं आप थल सेना से हैं तो वहां का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो एक्सपेडिशन में काम आया हो।
3: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है तो उन्होंने हमें काफी हेल्प की गाइड किया कैसे करना है क्या करना है। इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी। पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोल रही थी वो इंडियन आर्मी की ही थी तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था। और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग उनकी होती है अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया। ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे कहीं ना कहीं इन सब ने मिलकर इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है।
1: तो जैसे इतनी चैलेंजेस फेस आपाधापी में आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मुझे प्राजक्ता मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है।
0: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फोन था एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज स्लीप ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ खराब हो गया उसका रिपोर्टिंग होती थी एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5-5 मिनट या 10-10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए। बट ऐसे भी बहुत बार देखने की नेटवर्क ही नहीं है बिल्कुल ही नहीं है एंड बात नहीं हो पा रही है तो वहां बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया है बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी आर नॉट गिवन देम अ कॉल।
1: तो आपने विशाली जी आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ आपका मन किया मैं बताऊं?
2: नहीं बिल्कुल भी नहीं बट हैपन्स ऑन द बोट स्टेज ऑन द बोट
1: बहुत स्ट्रांग लीडी मतलब नारी शक्ति आज की नारी है जो अपने एक्सपीरियंस को अपने साहस को साथ लेते हुए अकेले लड़ना जानती है अकेले चलना जानती है टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलती है। मतलब आपका पड़ाव भी था जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं जिसको 4 देशों में रुका तो उस दौरान क्या किया गया कैसा आपको क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
3: देखिये पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट लिए थे जैसे हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था तो उसको मद्देनजर रखते हुए बोट के जो रिपेयर रिप्लेनिशमेंट राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिक्रूप ऑफ द क्रू ये चीजों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे। अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं देखिए जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें तो जब हम इन 4 कंट्रीज में गए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अर्जेंटीना

0: रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपने लाइफ में फील नहीं किया। जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहां पे जो उनका नेवल बैंड था, उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था और हम सबकी आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफशोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है और फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत कल्चर है। तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया। तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि हम अपने कंट्री को एज ए वुमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश में भी नहीं की, वो अमेज थे। तो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री, ये एक लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखें।
1: आपने एहसास इस समय फील किया, आप मुझे बता रही है मतलब आई हैव गूज़बम्प्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे वैशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए, दर्द से और कठिनाई से चुनौतियों का सामना करते हुए वो आंसू नहीं
2: इसके
1: नानी संजय साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में। लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर, आप बताएं मुझे प्राजक्ता किन किन बातों का ध्यान रखा।
2: सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता

प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी तो हम उसको क्रश करते थे. अब उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे तो हमारे पास चार बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में. एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहां पे हम डिस्पोज ऑफ

0: यादगार क्षण जो आप बताना चाहें।
1: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, तबियत खराब है, कभी तबियत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली, वो लगातार चलता रहता था। तो वो जो मिजरी है ना, वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट जो बोलता है ना कि ना कम है ना ज्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है, वो होती थी। वो मुझे याद है, वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हमें गाना सुन सके। वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था, और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर खराब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही। वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था, और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा।
0: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो?
2: हम मैम और मैं दोनों साथ में थे उस टाइम पे, एंड दिस वॉज वेन वी वर कमिंग टू मुंबई फ्रॉम केप टाउन। एंड मॉर्निंग आई थिंक 5:30-6 o'clock की बात है, हमें होराइजन पे सनराइज होता हुआ दिख रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे को आवाज आती है, बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में, और बहुत ही दूर है ये, क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो दूर हमने देखा ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉल्फिन्स, एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले। दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग, क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है। सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस।
0: तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है, और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
0: वैशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: लड़के लड़कियां में सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी, नेवी और दी एयरफोर्स। किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम, यू एक्सपीरियंस दिस। सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरी वन, दे शुड ज्वाइन द फोर्सेस।
0: आप क्या कहना चाहेंगे मेजर प्रोजेक्ट आपके शब्द?
2: आई वुड लाइक टू से कि सक्सेस कम्स विथ हार्डवर्क, परसिवरेंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट हैविंग एन ईगो। दिस इज समथिंग विच माई फादर यूज टू टेल मी, एंड दिस हैज स्टेड विथ मी बिकॉज आई हैव अ लेटर जो उन्होंने मेरे को दिया था, एंड जब मैंने ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था तो

0: लेटर लेके गई थी एंड दैट इज वॉट kept me going through this entire thing. Yes.
1: मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपीडिशन, आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं. आप तीनों का धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए.
2: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है podcast.eirnews@gmail.com.

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पर्सन बिहाइंड द स्टोरीज की सातवीं श्रृंखला जो यहीं संपन्न हुई। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:40 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम की ओर युवाणी में।

युववाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को युववाणी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। आज हम इतिहास की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी हैं। हमारी सोच, हमारी आवाज और हमारे सपने ही भविष्य उज्जवल बनाते हैं, हमारा भी और आने वाली पीढ़ियों का भी। हाँ, हम शहर में, गांव में, कहीं भी हों, हमारे सपने एक जैसे। सम्मान, गरिमा, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, स्वास्थ्य और मानसिक खुशहाली, जलवायु परिवर्तन से सुरक्षित भविष्य और फैसले लेने की अपनी भागीदारी। हम सभी अवसर, सम्मान और बेहतर कल चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि आज स्टार्टअप, डिजिटल इनोवेशन, सोशल मीडिया पर जागरूक हों, क्योंकि युवा वह चिंगारी है जो अगर सही दिशा में जले तो पूरी पीढ़ी रोशन कर सकती है। युवाओं की उम्र छोटी हो सकती है पर विचार बड़े होते हैं, क्योंकि हम वर्तमान हैं। हम खुद भी बेहतर बने और दूसरों को भी साथ लेकर चले। युवा शक्ति देश की असली पूंजी है। यह दिन मनाने का उद्देश्य है युवाओं की आवाज को दुनिया के सामने रखना। युवा समाधान है, युवा आवाज है। यह दिन शिक्षा, कौशल और नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है। आज का दिन युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का एक संदेश देता है। बातें आगे भी जारी रखेंगे, उससे पहले आइए सुनते गीत।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: यही एक मौका जो हम सभी युवाओं को कभी ना कभी मिलता है, और युवाओं के सबसे बड़े मार्गदर्शक विक्रम साराभाई जी को भी मिला। उन्होंने जब वे युवा थे तब उनकी मेहनत, लगन और ऊर्जा से भारत के महान वैज्ञानिक बने, भौतिक शास्त्री बने और भारतीय अंतरिक्ष

कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई जी बने। उन्होंने इसरो बनाया, इसरो की नींव रखी। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई की 1919 में अहमदाबाद में जन्मे और साराभाई ने महज 52 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1971 को हमें छोड़ दिया, लेकिन उनकी दूरदृष्टि ने भारत को अंतरिक्ष शक्ति बना दिया। उन्होंने फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी की स्थापना की, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की नींव रखी और इनकॉपर से शुरू करके थुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया, आईआईएम जैसे संस्थापक बनाए और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका यह मानना था कि विकासशील देश के आम आदमी की समस्याओं को हल करने का माध्यम बन सकती है, चाहे वह संसार हो, मौसम हो, पूर्वानुमान हो या संसाधन प्रबंधन हो। आज जब भारत चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान और निजी क्षेत्र के अनेक रॉकेटों जैसे विक्रम 1 के साथ अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है, तो साराभाई की विरासत और भी प्रासंगिक लगती है। उन्हें हमें नकल नहीं बल्कि नवाचार और आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया। आइए आपको सुनवाते गीत।

नकल नहीं बल्कि नवाचार और आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया। आइए आपको सुनवाते गीत।

0: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जी तो विक्रम साराभाई ने बिल्कुल मैजिक ही किया था और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की नींव रखी थी। दोस्तों अब हम बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान पर। हर घर तिरंगा अभियान भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला एक राष्ट्रीय जन आंदोलन है। इसका मुख्य उद्देश्य है हर भारतीय को अपने घर, कार्यालय या सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारा तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना और तिरंगे के प्रति व्यक्तिगत जुड़ाव और देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत करना। यह अभियान 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू हुआ था। अब यह वार्षिक परंपरा बन गया और 2026 में इसका 5वां संस्करण है। इसकी अवधि 9 अगस्त से 17 अगस्त तक है। इस वर्ष इस अभियान को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित किया गया है। तिरंगा फहराने के साथ साथ सामूहिक वंदे मातरम गायन पर भी इसमें विशेष जोर दिया गया है। तो आप सभी जरूर तिरंगा फहराइएगा। और इसी के साथ आइए हम सुनते हैं खूबसूरत गीत।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आप सभी तिरंगा अपने घर पर, अपने घर की छत पर फहराइए और साथ में वंदे मातरम गीत जरूर गाइए। और इसी के साथ में आप सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, अच्छे से स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ दीजिए इजाजत कार्यक्रम युववाणी को समाप्त करने की, जया चतुर्वेदी को नमस्कार।

ये वाणी जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे काली घटा फिल्म का गीत। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

योगेश के बोलन को सुर में ढला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार का गाया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मंजिल से। फिल्म मिशाल, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें।

जावेद अख्तर का लिखा ये गीत आप सुन रहे हैं। संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में मशाल फिल्म का ये गीत है। आज के तराने नए पुराने कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी
1: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी पूंजी जुटाने में विकास बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कहा, ब्रिक्स देशों में विश्वास और स्थिरता का सशक्त ढांचा जरूरी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने सावन के महीने में रफ्तार पकड़ी, आज भी कई स्थानों पर तेज बारिश। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों से राष्ट्र हित के विषयों पर सभी वर्गों के लोगों से संवाद का आह्वान किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि निजी निवेश के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री आज जयपुर में आयोजित ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में बोल रही थी। ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका विषय पर इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा काजी से।
2: श्रीमती सीतारमण ने अपने की नोट एड्रेस में कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के प्रमुख विकास इंजन हैं, किंतु निजी पूंजी जुटाने के मामले में इन देशों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि पूंजी की उपलब्धता के साथ ही निवेशकों के विश्वास, स्थिरता, दीर्घकालिक नीतिगत ढांचा बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को निवेश का जोखिम कम करने, वित्तीय परियोजनाओं को अधिक सक्षम बनाने और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण बताया। संगोष्ठी में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ ने भी विशेष संबोधन दिया। गौरतलब है कि ब्रिक्स ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया के प्रमुख विकासशील और उभरते हुए देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस बार भारत की अध्यक्षता में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से जयपुर की मेजबानी में ये बैठक हो रही है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री शाह आज संसद परिसर में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
3: सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
1: उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है बल्कि सवाल जवाबदेही का है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने का आग्रह किया है। उन्होंने रील्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा

0: संघर्ष के विमोचन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित होकर काम करने पर बल दिया।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: देश विदेश के विश्वविद्यालयों के विधि विद्यार्थी अब राजस्थान पुलिस से प्रशिक्षु के रूप में जुड़ सकेंगे। इन्हें पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं और इकाइयों में पुलिस कार्यों का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बिपिन कुमार पांडे ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार पुलिस मुख्यालय ने राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना शुरू की है। इसके जरिए प्रशिक्षु प्रभावी पुलिसिंग, आपराधिक न्याय प्रणाली, साइबर कानून और अन्य विषयों तथा अनुसंधान की प्रक्रियाओं में ट्रेनिंग ले सकेंगे। योजना के लिए प्रतिभाओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये योजना पूरे साल खुली रहेगी और इच्छुक उम्मीदवार राजकॉप सिटीजन ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने सावन के महीने में रफ्तार पकड़ी है। इससे प्रदेश में बारिश की कमी का आंकड़ा घटकर सामान्य से 9% कम रह गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार अब तक बाड़मेर और बीकानेर सहित 7 जिलों में अत्यधिक वर्षा हुई है। अजमेर, चूरू, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर सहित 21 जिलों में सामान्य और 13 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। प्रदेश के 693 छोटे बड़े बांधों में से आधे से ज्यादा जलाशयों पानी की आवक हुई है। 25 बांध लबालब हैं। इस बीच आज भी कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर चला। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा और भीलवाड़ा में मूसलाधार बरसात हुई। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में 22 सेंटीमीटर पानी बरसा। जिले के बेगू, कगरार, निम्बाहेड़ा, डुंगला, भरेसर और रावतभाटा में भी जमकर बरसात हुई। रावतभाटा क्षेत्र का खोखी बांध पानी की तेज आवक के कारण टूट गया। इससे कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने कल 26 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कल अधिकतर स्थानों पर मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। रिमझिम बारिश के दौर के बीच आज हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया गया। विभिन्न पर्यटन स्थलों पर लोग परिवार सहित मौसम का लुत्फ लेते नजर आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रत्येक लोकतंत्र सेनानी को अपने जीवन के अनुभव लिखित रूप में दर्ज करने चाहिए। राज्य सरकार भी उनके योगदान को संरक्षित करेगी। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और बलिदान की गाथाएं युवा पीढ़ी तक पहुंचे, इसीलिए इन सेनानियों को अपने अनुभव किताब के रूप में लिखने चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों से राष्ट्रहित के विषयों पर सभी वर्गों से निरंतर संवाद का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानी समाज और राष्ट्र को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। उनके अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए।
2: मुझे ये विश्वास है कि आप जहां भी जाएंगे, जिस किसी से बात करेंगे, जिस किसी से विषय रखेंगे, वो निश्चित रूप से उसको दिशा मिलेगी। आप ऐसे लोगों के पास जाइए, बैठिए, उनको बताइए। डेली की अगर आप 10-15 लोगों से मिलोगे, बात करोगे, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करेगा।
0: पत्र सूचना कार्यालय की ओर से आज जयपुर में नशा मुक्त भारत अभियान पर मीडिया वार्ता का आयोजन किया गया। मादक पदार्थों की रोकथाम और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए मीडिया की भूमिका पर चर्चा करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया। वार्ता में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर अभिषेक नारायण सिन्हा ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में मीडिया की अहम भूमिका है। श्री सिन्हा ने मीडिया कर्मियों से नशे के गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया।
3: जो एक पिलर है हमारा विजन डॉक्यूमेंट का, हार्म्स एंड डिमांड रिडक्शन। तो डिमांड रिडक्शन में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि अवेयरनेस मीडिया के बिना हो ही नहीं सकता। कितनी भी

0: एजेंसी कुछ भी काम कर ले, जब तक मीडिया लोगों को अवेयर नहीं करेगी नशा के दुष्परिणामों का, तब तक नशा मुक्त भारत अभियान मुश्किल है। अभी इस साल 13 अवेयरनेस प्रोग्राम किए, फिर हमने कई सारे कोचिंग संस्थाओं में अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया, उनको शपथ दी। तो इस तरह से होलसम अप्रोच से ही हमारा टारगेट होगा राजस्थान को ड्रग्स मुक्त करना, और हर स्टेट अपना ये टारगेट ले तो ये पूरा इंडिया ड्रग मुक्त 2029 तक होगा।
1: पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक अनुभव बैरवा ने इस मौके पर कहा कि युवाओं को नशे से बचाने और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जन जागृति फैलाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र, रेडियो और टीवी के जरिए समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा सकता है, इससे नशा मुक्त भारत का संकल्प पूरा करने में सहायता मिलेगी। आज विश्व हाथी दिवस है। ये दिन हाथियों के आवास और उनके संरक्षण के प्रयासों को समर्पित है। भारत दुनिया के लगभग 60% जंगली एशियाई हाथियों का घर है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में हाथियों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट एलिफेंट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत हाथियों के प्राकृतिक आवास को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाथी दिवस पर पेश है न्यूज डेस्क एक रिपोर्ट।
2: हाथियों को जंगल की शान और इकोसिस्टम का इंजीनियर कहा जाता है। देश के 14 राज्यों में 33 हाथी रिजर्व और 150 महत्वपूर्ण हाथी कॉरिडोर सक्रिय हैं। हाथियों की आवाजाही पर नजर रखने और मानव हाथी संघर्ष टालने के लिए कैमरा ट्रैप, ड्रोन और सेंसर सहित आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। जयपुर में देश का एकमात्र हाथी गांव भी बसाया गया है, वहीं आमेर में हाथी सवारी काफी लोकप्रिय है। हालांकि दुनिया भर में बढ़ते पशु कल्याण अभियान और जिम्मेदार पर्यटन की अवधारणा का असर इस पर देखने को मिल रहा है, और पिछले 5 साल में हाथी सवारी करने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में कमी आई है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी पूंजी जुटाने में विकास बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कहा, ब्रिक्स देशों में विश्वास और स्थिरता का सशक्त ढांचा जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने सावन के महीने में रफ्तार पकड़ी, आज भी कई स्थानों पर तेज बारिश। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों से राष्ट्रहित के विषयों पर सभी वर्गों के लोगों से संवाद का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजधानी जयपुर में पिछले एक माह में विभिन्न कार्यक्रम और महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई। इनमें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों, प्रशासनिक गतिविधियों, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन से जुड़े कामों के साथ बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों से बचाव पर भी जोर दिया जा रहा है। जिले में हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। वहीं नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 9 अगस्त को जयपुर में अल्बर्ट हॉल से विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली रामनिवास बाग से सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ तक पहुंची। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन, पुलिस, सेना, विद्यार्थी, एनसीसी, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, व्यापारी, पूर्व सैनिक और आम नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हाल ही में ब्रिक्स उद्यम और व्यापार मंत्रियों की बैठकें जयपुर में आयोजित की गईं। बैठकों में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित रहे। इस दौरान ब्रिक्स देशों के उद्योग और व्यापार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का भी प्रस्ताव रखा। बैठक में एमएसएमई, फोटोवोल्टिक उद्योग, स्टार्टअप और लॉजिस्टिक्स

0: क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का उद्देश्य व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना है और सदस्य देशों के बीच विश्वास मजबूत करना है। इसके अलावा आज और कल ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को पीएम ई बस सेवा के तहत 16 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। उन्होंने शासन सचिवालय में बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई बसों के संचालन के लिए शहर में जगह जगह बस स्टैंड, चार्जिंग प्वाइंट और जरूरी ढांचा विकसित किया जा रहा है। नगर निकाय आम चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बीते दिनों बैठक आयोजित हुई। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदान दलों के गठन और प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री, ईवीएम, कानून व्यवस्था, परिवहन और मतदाता जागरूकता से जुड़े कार्यों की समीक्षा भी की गई। चुनाव के सुचारू संचालन के लिए जिले में 27 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं और सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले को 287 करोड़ 77 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसमें महिला सशक्तिकरण, आंवला उत्पादन और प्रसंस्करण, लिसोड़ा प्रजाति के विकास, कबड्डी, आमेर दुर्ग और रत्नाभूषण उत्पाद को बढ़ावा देने के कार्य शामिल हैं। वहीं महिला समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए मोबाइल वैन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कबड्डी खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों में आवश्यक उपकरण और रिहैब की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जिले में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला कौशल और उद्यमिता समिति की बैठक हुई। इसमें कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय पर चर्चा की गई। समिति का उद्देश्य स्थानीय रोजगार के अवसरों की पहचान कर युवाओं को मांग के अनुरूप प्रशिक्षण से जोड़ना है। दूदू क्षेत्र में 113 दिनों से चल रहा भैराना धाम बचाओ आंदोलन सहमति के बाद समाप्त हो गया है। प्रशासन और समिति के बीच प्रस्तावित रीको औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्नियोजन को लेकर सहमति बनी। प्रशासन ने वर्षा जल संरक्षण, धार्मिक आस्था, पर्यावरण, स्थानीय परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों का ध्यान रखने का आश्वासन दिया। इसी के साथ जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निजी पूंजी जुटावण में विकास बैंकों का काम न खास बतायो। कहो ब्रिक्स देशा माए भरोसा अर्थता रो मजबूत ढांचो जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो सरकार सगड़ा मुद्दा माथे चर्चा सारू तैयार। विपक्ष हूँ संसद री कार्रवाई ठीक ढंग चलावण माए मदद री अरज कीनी। सावण माए आज ही कई थोड़ा चोखो में बरसियो। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियाओं देश रा भलारा मुद्दा माथे सगड़ा तबकारा लोगों चर्चारी अरज कीनी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहो है कि सार्वजनिक पूंजी ने निजी निवेश ने बढ़ावो देवन वाला तत्व रा तौर काम करनु चाहिए। वह ब्रिक्स देशों रा वित्त मंत्रियां और केंद्रीय बैंक रा गवर्नर री आज जयपुर माए राखी जी मीटिंग माए बोल रही है। मीटिंग रो मुद्दो ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका रखी चियो। पेश है समाचार कक्ष सलेह गाजी री रिपोर्ट।
2: श्रीमती सीतारमण ने अपने की नोट एड्रेस में कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के प्रमुख विकास इंजन हैं, किंतु निजी पूंजी जुटाने के मामले में इन देशों के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि पूंजी की उपलब्धता के साथ ही निवेशकों के विश्वास, स्थिरता, दीर्घकालिक नीतिगत ढांचा बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को निवेश का जोखिम कम करने, वित्तीय परियोजनाओं को अधिक सक्षम बनाने और निवेशकों के विश्वास को मजबूत

0: मजबूत करने में महत्वपूर्ण बताया। संगोष्ठी में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ ने भी विशेष संबोधन दिया। गौरतलब है कि ब्रिक्स ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया के प्रमुख विकासशील और उभरते हुए देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस बार भारत की अध्यक्षता में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से जयपुर की मेजबानी में ये बैठक हो रही है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि सरकार विद्यार्थियों रा मुद्दा समेत किनी विषय माथे चर्चा सारू तैयार है। वे आज संसद भवन परिसर में खबरनवी सागे बातचीत कर रहा है। गृह मंत्री कहो कि सरकार संसद में सदस्यों रा सगला सवाला रो जवाब देवेला। श्री शाह विपक्ष रा सदस्य माथे सदन री कार्रवाई में अड़चन डालबारो आरोप मंडियो।
2: सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
1: दुजगानी लोकसभा में विपक्ष रा नेता राहुल गांधी कहो कि विपक्ष नीट परीक्षा पेपर लीक उचुड़िया मामला में विद्यार्थियों रा प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्रवाई रे बारे में सरकार और जवाबदेही री मांग कर रियो है। संसद भवन परिसर में खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका श्री गांधी कहो कि विपक्ष ने गृह मंत्री रा बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है बल्कि सवाल जवाबदेही रो है। इविचे संसद रा दोनों सदन री कार्रवाई में आज विपक्ष रा हंगामा रे कारण अड़चन आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवानों मारा मन भावता लोगों री आत्मकथा पांचवा सारू कहो है। वह रील्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रा जमाना में शॉर्टकट काम लेवनो बचबारी राय दीनी। श्री मोदी आज नई दिल्ली में पहली वाला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद री आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष रा विमोचन रे मौके बोल रहा है। वह नौजवानों विकसित भारत बनावन रा मिशन ने आगे बढ़ावन सारू पूरा मनु काम करण माथे जोर दीनो।
3: हमें भविष्य में गोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: देश परदेश रा विश्वविद्यालय में कानून री पढ़ाई करण वाला अब राजस्थान पुलिस में सिखावन ले सकेला। वान पुलिस मुख्यालय री न्यारी न्यारी शाखावा और इकाइया में पुलिस रा कामा रो व्यवहारिक अनुभव मिलेला। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बिपिन कुमार पांडे का नियम जारी करी जिया हुकम रे मुजब पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना चलाई ची है। इन जरिए सिखावन लेवन वाला असरदार निगरानी, आपराधिक न्याय प्रणाली, साइबर कानून और दूजा विषया और अनुसंधान री प्रक्रिया री सिखावन ले सकेला। इन सारू आखा साल राजकॉप सिटीजन ऐप रे जरिए अर्जी दी जा सके है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सावन माय वह रही चोखी बिरखाऊं प्रदेश माय बारिश रे कमी रो आंकड़ो घटर सामान्य 9% कम रह गयो है। जल संसाधन विभाग रे मुजब हाल ताई बाड़मेर और बीकानेर समेत 7 जिला माय घनी जोरदार बिरखा भी है। अजमेर, चूरू, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर समेत 21 जिला माय सामान्य और 13 जिला माय सामान्य कम पानी बरसियो है। प्रदेश रा 693 छोटा मोटा बंधा मायों आधाओं बत्ता माय पानी आ रियो है। 25 बंधा लबालब भर गया है। इबीचे आज ही चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा और भीलवाड़ा माय झमाझम बिरखा भी। चित्तौड़गढ़ जिला रा बस्सी माय 22 सेंटीमीटर पानी बरसियो। जिलारा बेगू, गंगरार, निम्बाहेड़ा, डूंगला, बदेसर, रावत भाटा माई चोखो में बरसियो। रावत भाटा हल्का रो खोकी बंधो पानी री तेज आमद रे कारण टूट गयो, जिणु कई हल्का माई पानी भर गयो। मौसम महकमो काल 26 जिला सारू बारिश रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। काल घनखर ठोणा मझला और कठा कठा तेज दर्जा री बिरखा रा आसार है। रिमझिम बारिश रा दौर बीचे आज हरियाली अमावस मनाई जी। निमोके सैर सपाटारी नैरी नैरी थोड़ा लोग

0: परिवार समेत गोठ मनाता नजर आया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि लोकतंत्र सेनानिया ने वारी जिंदगी रा अनुभव लिखना चाहिए ताकि राज्य सरकार वारा योगदान री जानकारी हेर राख सके। श्री शर्मा आज जयपुर में वारा रेवास माथे राखी जिया लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में बोल रहा है। वह कहो कि लोकतंत्र सेनानिया रा त्याग और बलिदान रे गाथा नुवी पीढ़ी ताई पुगावन सारू वाने अनुभव किताब रा रूप में लिखना चाहिए। मुख्यमंत्री कहो कि लोकतंत्र सेनानियाओं देश रा भलाऊ जुड़िया मुद्दा माथे लगातार चर्चा वेवनी चाहिए। वह कहो कि लोकतंत्र सेनानी समाज और देश ने दिशा देवन रो बूतो राखे है और वारा अनुभव रो फायदो प्रदेश ने मिलनो चाहिए।
1: मुझे ये विश्वास है कि आप जहां भी जाएंगे

0: चाहिए।
1: मुझे ये विश्वास है कि आप जहां भी जाएंगे, जिस किसी से बात करेंगे, जिस किसी से विषय रखेंगे, वो निश्चित रूप से उसको दिशा मिलेगी। आप ऐसे लोगों के पास जाइए, बैठिए, उनको बताइए। डेली की अगर आप 10-15 लोगों से मिलोगे, बात करोगे, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करेगा।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज स्टेट इनोवेशन हब बनावन रा बारा माय मीटिंग लेनी इनमाय जयपुर रा प्रताप नगर कोचिंग हब इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स माय स्टेट इनोवेशन हब बनावन रा प्रस्ताव रा बारा माय चर्चा करी छी। मुख्य सचिव प्रस्तावित हब माय इंक्यूबेशन सेंटर, प्रदर्शनी हॉल और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं सारू जरूरी सुविधा शामिल करण रा हुकम दीना। नशा मुक्त भारत अभियान रे बारा माय आज जयपुर माय पत्र सूचना कार्यालय रे ओर मीडिया वार्ता राखी छी। मादक पदार्थों की रोकथाम और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए मीडिया की भूमिका मुद्दा माथे चर्चा करण सारू राखी छी। वार्ता माय केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो रा जोनल डायरेक्टर अभिषेक नारायण सिन्हा नशीली चीजों की तस्करी और गैर कानूनी कारोबार री रोकथाम सारू करी जा रही कोशिशों की जानकारी दीनी। वे कहो कि नशा रे खिलाफ जाग जगावन माय मीडिया रो खास काम है। श्री सिन्हा मीडियाओं नशा रा गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान रे बारा माय लोगों ने जानकारी देवन बाबत कहो।
2: जो एक पिलर है हमारा विजन डॉक्यूमेंट का, हार्म्स एंड डिमांड रिडक्शन, तो डिमांड रिडक्शन में मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि अवेयरनेस मीडिया के बिना हो ही नहीं सकता। कितनी भी एजेंसी कुछ भी काम कर ले, जब तक मीडिया लोगों को अवेयर नहीं करेगी नशा के दुष्परिणामों का, तब तक नशा मुक्त भारत अभियान मुश्किल है। अभी इस साल 13 अवेयरनेस प्रोग्राम किए, फिर हमने कई सारे कोचिंग संस्थाओं में अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया, उनको शपथ दी। तो इस तरह से होलसम अप्रोच से ही हमारा टारगेट होगा राजस्थान को ड्रग्स मुक्त करना, और हर स्टेट अपना ये टारगेट ले तो ये पूरा इंडिया ड्रग मुक्त 2029 तक होगा।
0: पत्र सूचना कार्यालय रा निदेशक अनुभव बैरवा कहो कि नौजवानों ने नशारी लतों बचावन और स्वस्थ जीवन शैली सारू जनता माय जाग जगावन रा काम माय मीडिया घणो खास है। श्री बैरवा कहो कि अखबारा, रेडियो और टीवी रे जरिए समाज माय सकारात्मक वातावरण बनायो जा सके है। आज विश्व हाथी दिवस है। वो दिन हाथियां रा रहवास एरवान बचावन रे कोशिशा ने समर्पित है। भारत दुनिया रा करीब 60% जंगली एशियाई हाथियां रो घर है। ई मौके केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए हाथियां ने बचावन सारू चलाया जा रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट रो जिक्र कीनो। देश में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय री ओरों प्रोजेक्ट एलिफेंट रा तहत हाथियां रा रहवास ने बचावन री कोशिशां करी जा रही है। हाथियां ने जंगल री शान और इको सिस्टम रा इंजीनियर कहा जावे है। देश रा 14 राज्यों में 33 हाथी रिजर्व और 150 खास हाथी कॉरिडोर है। हाथियां री आवाजाही माथे नजर रखण और इंसाना और हाथियां री लड़ाई टाळबा सारू कैमरा, ट्रैप, ड्रोन और सेंसर समेत नवी तकनीक काम ली जा रही है। जयपुर माय देश रो एक लो हाथी गांव भी बसाई चियो है। आमेर माय हाथी री सवारी ये घणी लोकप्रिय है। हालांकि दुनिया भर माय बधता पशु कल्याण अभियान और जिम्मेदार पर्यटन री सोच रो असर ई माथे ही नजर आवन लाग्यो है। अरलारला 5 साल माय हाथी सवारी करण वाला परदेशी सैलानियां री तादाद माय कमी आई है। आखिर माय खास समाचार एक कर फेर सुन ले राओ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निजी पूंजी जुटावन माय विकास बैंक रा काम ने खास बतायो। कहो ब्रिक्स देशा माय भरोसा अर्थरता रो मजबूत ढांचो जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो सरकार सगड़ा मुद्दा माथे चर्चा सारू तैयार, विपक्ष हूँ संसद री कार्रवाई ठीक ढंग चलावन माय मदद री अरज कीनी। सावण माय आज ही कई थोड़ा चोखो में बरसियो और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लोकतंत्र सेनानियाओं देश रा भला रा मुद्दा माथे सगड़ा तबका रा लोगों चर्चा री अरज कीनी। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है।

धन्यवाद कार्यक्रम हमारा वारा हांग्र बैरा ने सोरा आड़ी वीना बेनो राम राम राम राम। देखो बेनो आज बैरा नो कार्यक्रम है ने जी बैरा है ना इंतजार रहते कि भाई कई वक्त बुधवार नो दाड़ो आवे ने कई वक्त सोरा माते जे। देखो भाई इंतजार करते करते बुधवार नो दाड़ो भी आवी गयो ने आपणो जी बैरा नो कार्यक्रम है भी चालू थई गयो है। बेनो सब थकी पहले तो हांगरी बेने हैं जी बैरा हैं सोरा माते आवी गया हैं तो सब थकी पहले सब बैरा ने हरियाली अमावस्या नो घणो घणो राम राम ने हार्दिक शुभकामनाएं। देखो आज हरियाली अमावस्या है ने हरियाली अमावस्या ने अपने वागण में दिवासो भी क दिवासो तो आज दिवासो भी है ने अमावस्या भी है। बेनो सत्य की पहले आपणे वात करा के हरियाली अमावस्या एनी बात वात करंगा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ने बारे वात करंगा। बीजी वात करंगा हर घर तिरंगा अभियान ने बारे वात करंगा। एने बाद कमलीबाई नी वात है के मोटो अनाज खाई ने आनु जीवन अन्न स्वास्थ्य हरती स्वस्थ राख्यु एने बारे में कमलीबेन है वाते करेगा तो अणनी वाते भी आपणे होणांगा एने हाथी गीत भी होणांगा संदेश भी होणांगा। ने बेनो आ तो शू पूरु वेवरापन जानकारी। बेनो अभी आपणे सत्य की पहले वात करे के हरियाली अमावस्या नी। बेनो हरियाली अमावस्या सावन महीना में आपणे मनावा। बेनो आ त्योहार है ई प्रकृति प्रेम वर्षानो स्वागत ने चारों तरफ थे कि हरियाली नो उत्सव मनावा हारू हरियाली अमावस्या मनावे अने दाड़े लोग ही अधिक थे कि अधिक वधारे जी पेड़ पौधे ही लगाड़े ताकि आपणो जी पर्यावरण है ई अच्छू बशी लो रहे। बेनो पेड़ पौधे तो आप लगाड़ा पण जी हरियाली अमावस्या दाड़े आप पौधारोपण करे तो एने में खास कई पौधारोपण ई बेनो ए आपने जानवो भी जरूरी है। आज हरियाली अमावस्या है एने दाड़े खास पौधे है पीपल नीम ने तुलसी जेवा पौधे है आप लगाड़ी शक। बेनो पेले के भगवान शिव नी पूजा है सावन महीना में थाय ने शिवजी है सावन महीना में पूजा थाय तो खूब आनंद पसंद है अने अमावस्या में शिवजी यानी भोलानाथ ने पूजा करवा थे कि आपणे घर में सुख शांति मले ने पितृ तृप्ति अने दाड़े पूर्वजो यानी पितृ ने शांति हरु आपणे दान पुण्य ने पूजा करवेनो। देखो आज ने दाड़े तो घणो खुशी नो भी दाड़ो है दिवासो भी है हर घर में आ दिवासो जे हरियाली अमावस्या मनावी थका है अपने वागड़ ना क्षेत्र में तो खास करीने अपने राजस्थान में जे वागड़ अंचल है एने विशेष करीने बेनो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बे जिले में आ श्रावण मास ने लेने देश भर में अलग अलग परंपरा है निभावे अपने तो वागड़ ना जे जाणस किम के कई हिस्सों में श्रावण मास आषाढ़ पूर्णिमा ने बाद थी कि शुरू थी जाए ने आपणे वागड़नी वात करे तो वागड़ना क्षेत्र में आ माह हरियाली अमावस्या ने बात थी कि शुरू थाय। बेनो आपणे श्रावण माह पूरो डेढ़ महीना तक रहे एने में श्रद्धा अनुष्ठान

0: अकेले? आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: बेनो देखो आज ही कमली माए था, अने मैं तो खूब बढ़िया जानकारी आ लेने देखो, अने हरियाली अमावस्या में एक गीत भी पशु गाई दे दो। देखो भाई वो बुजुर्ग जी बा है, यानी जी पुरानी बातें है, हरते खाए नाना नो जीवन व्यापन करू, हरते काटा है, हरते स्वस्थ है, भाई ये भी अपने ने ध्यान में भी रखू हो। अपने भी पास जी भी मोटो धान है इन्हे उपयोग में लेव खाव है, क्योंकि पहले वाले जी भी खाव पीव कर एटले काटो है, स्वस्थ है ने अभी सुरक्षित है। बेनो देखो कमली बार तो अपने बात होनी, पर अवे फेरी अपने बात करें कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ने बारे में जरा बात करें, क्योंकि बेनो अपने जी भी योजना वगैरह है, जी भी भारत सरकार या केंद्र सरकार या अपने राज्य सरकार ने जी भी योजना है, इनी भी अपने बातें कर जी बेने सोरा माते नहीं आवी शकी है, ई बेने भी अपनी बातें है घरे बेटा रेडियो चालू कर होने रही थकी होगा। तो बेनो आज प्रधानमंत्री मातृत्व योजना बारे में बात करा। बेनो भारत सरकार ने एक आर्थिक सहायता योजना भी अपने कह जी गर्भवती बहने हैं, महिला है, अने स्तनपान यानी धात्री माता ने जी पोषण सुधार ने मजदूरी ने नुकसान की भरपाई हरू, पहला बच्चा में सरकार ये 5,000 ने दूसरो बच्चों थाय लड़की थाय तो इन्हें 6,000 सहायता आले। देखो बेनो भारत में अपने बहुसंख्यक मतलब वधारे महिलाएं ऊपर कुपोषण नो प्रभाव पड़ी रो है। भारत में हर तीसरी महिला ये कुपोषित थे रही थी की है, हर दूसरी महिला ही पलापड़े करके एनीमिया हिमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कोशिका ने कमी नो शिकार थे रही है। तो इन्हें हरू आज प्रधानमंत्री मातृत्व योजना आर्थिक सहायता हरू आज योजना है। बेनो अपने कह के कमजोर यानी कि जी माँ है लगभग अनिवार्य रूप थे कि कम वजन नो जी बच्चा है जन्म आले दे, जै वक्त अल्प पोषण गर्भधारण शुरू करे एने में पूरु जीवन चक्र है फैली जाए। तो आपणे पहले नहीं कहते कि भाई एक वक्त कुपोषित थी गयो, महिला कमजोर थी गई, बेन कमजोर थी गई, तो पछी जी आवा वाली जी पीढ़ी है इने माथे भी प्रभाव पड़े। तो बेनो आपणे आर्थिक सामाजिक संकट में सालता थे कि कई महिलाएं ही गर्भावस्था में आखरी दाड़ा तक अपनो परिवार सलावाहारू जीविका सलावाहारू काम करती रहे। आपणे दीखी सोगा बेनो कि घणी खरी बेने भाई भारी पेट है तो भी आखरी टाइम आते भी जी काम ही करती रहे, ने एने अलावा भाई प्रसव थई गयो डिलीवरी थई गई ने बाद भी काम है ई करती रहे, तो आनो शरीर है अनुमति भले नहीं आले बेनो पर मजबूरों ने ई काम करे, तो एने कारण थे कि आनो स्वस्थ है इन माथे घणो असर पड़ी जाए, हमेशा रो स्वस्थ ने रे। तो बेनो एने हरू अपने खान पान जरूरी है, ने बीजी तरफ थे कि नवजात शिशु है जी प्रथम ने 6 माह थकी इन्हें सही तरीका थे कि स्तनपान यानी कि आप दूध नहीं पादो मानो, तो इन्हें कारण थे कि जी बच्चू है ये भी पूरी तरह थे कि भाई स्वस्थ नहीं रहे, घने वक्त ये समस्या भी आवे तो इन्हें हरू जी

प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है, तो बहनों जी अपने आंगनवाड़ी केन्द्र है या आशा बहन है एना थी कि आप पूरी परामर्श ले जी भी गर्भधारण बहने हैं एना जी पोषाहार संबंधी सूचना है ये आशा बहन है ये सूचना ले तो अपने समय मैं जाइने एनु पोषण जी भी है ये लेव जरूरी है ने अपने स्वस्थ हरू जी बेने गर्भधारण है तो आना पोषण थे कि जी कुपोषित है दूर थी जाए तो बेनो आ तो आप बात करी कि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना ने बारा में सोरो भरे थको है बेने मारा हमें दिखी रही थकी है कि विना बेन तो वातिस करता जाई रहे ने भाई संध्या वाला नो टेम है ने एक गीत हुआ तो केमने भाई गीत वगर तो आप जी बैरनो सोरो है अधूरो रही जाए तो केमने एक वक्त तो आप गीत होना कि भाई सावण आयो केम के आज देखिए तो सावण भी चालू थी गयो है तो सावण नो एक गीत होनी ला ने पसे बीजी बात है करा।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: बेनी देखो आ श्रावण नो जे गीत है ये अपने होनो ने आज देखे श्रावण भी चालू थे गयो है ने अवे जाते जाते बेनो हर घर तिरंगा अभियान ने जरा बात अपने करेला बेनो हर घर तिरंगा जी भारत सरकार द्वारा जी स्वतंत्रता दिवस ने अवसर ऊपर शुरू करियो है आ एक अभियान है इनो उद्देश्य बेनो है के लोगों ने अपने घर ने राष्ट्रीय ध्वज फहरावा हारू प्रेरित करवो है ने देश ने प्रति देशभक्ति नी भावना है जगाड़वी है क्योंकि आ जी अभियान है इन्हें मुख्य वाती है ये अपने याद रखवी जरूरी है अपने देशरू हर नागरिक ने प्रति एक देशभक्ति नी भावना है जागवी जरूरी है बेनो अपने देशभक्ति हरू तो हर काम है अपने तत्पर ने जी राष्ट्रीय अभियान है आ शुरू करियो थको है तो हर नागरिक ने जिम्मेदारी है हर घर तिरंगा है ये लहरावा जरूरी है बेनो आ तो आपने बात करी हर घर तिरंगा अभियान ने अवे मारो मन भी घणो एथो बैरनो सोरो है पूरो भरो थको है पण जी सोरानो टेम है बेनो पूरो शो आपने तो टेम नो मान राखो घणो जरूरी है टेम ना भांजे थक है तो आजे तो आपने सूटा पड़ा ने आवते बुधवारी हम तो बेने थे कि आपने मलवानो फेरी मौको मलेगा ए आवजू राम राम राम राम।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से कार्यक्रम वैरानी बात, जो यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम।

0: खेतीबाड़ी की बाढ़ जोता सभी किसान बहन है अनीता की घनी घनी राम राम सा। और भूमिका जी आपने भी घना घना राम राम।
1: अनीता बहन आपने भी राम राम। और महाकाश श्रोता गहन आपने भी घना घना राम राम जी।
0: भूमिका जी देखो सा अपने किसान भाई पूरी साल मेहनत कर फसल तैयार करे छे।
1: बिल्कुल।
0: पर जब फसल में कीट या बीमारी लाग जाओ छे तो वाकी पूरी मेहनत और लागत पर संकट आ जाओ छे। कई बार तो किसान भाई समस्या की पहचान भी कौन कर पावे पण तुरंत बाजार से कोई दवाई ल्यार ऊपर छिड़क दे छे, यानी कि सही तरीका से सही बीमारी को पतो कौन चले। पर अगर लागे छे कि भाई कोई बीमारी होगी तो कोई दवाई लिया या और फसल पर छिड़क दे छे, इस होवे काई छे भाई बीमारी तो ठीक होवे कौन है पर नुकसान और ज्यादा बढ़ जावे।
1: बिल्कुल सा।
0: इसलिए सबसे पहली जरूरी छे कि फसल में जो दीखबो वालो लक्षण छे काई कीट छे काई पहचान छे उनकी तो उनकी सही तरीका से पहचान करे। पत्तियां को पीलो होवो, पत्तियां को मुड़वो, पत्तियां ने धब्बा पड़वो, पत्ता को मुरझावो, तना में छेद होवो, फल में सुराख होवो या फल के अंदर से खराब होवो, या सभी का न्यारा न्यारा कारण है सके छे। या जरूरी कौन है कि हर समस्या की वजह कीट ही होवे। कदे कदे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, ज्यादा नमी, पानी की कमी या मौसम में बदलाव के कारण भी फसल में ऐसे लक्षण दिखाई दे जावे छे।
1: बिल्कुल। और लक्षण से ही आपन देख सके हैं कि की प्रकार से फसल में बीमारियां हो रही हैं। तो सबसे जरूरी चीज या भी आ जावे है कि आपन समस्या की पहचान की प्रकार से कर सके हैं कि किसान से पत्तियों का रंग धब्बा तना का सूख वो जो फल फूल है वो झड़ रहा है कि की कंडीशन में की तरीका से वो फसल पर टिक रहा है, जो कीट लागे है वहाँ की कौन सी किस्म छ कि भाई सूंडी छ या माहू है या दीमक है, यहाँ सभी के बारे में अपन पूछ सके हैं। दूसरा का ही हो गया है कि संभव हो तो अपन जो तस्वीर या नमूना ले लेवा
0: जी
1: प्रभाव जो भी पौधा होवे ना जो भी यहाँ सभी चीजों से प्रभावित होवे माना अपन पौधा की साफ फोटो मंगवानी चाहिए और पौधा का हिस्सा को देखकर अपन जो भी विषय विशेषज्ञ हो वहाँ से पुष्टि कर लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और देखो ऐसी स्थिति में किसान भाई ने खुद के अनुमान के आधार पर दवा न डालनी चाहिए। कृषि विशेषज्ञ, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वसनीय कृषि सलाहकार ने समस्या की पहचान करा ही बहुत ज्यादा उचित सलाह लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल सर। और देखो अनीता बहन कहीं चाहे कि देखो करसा भाई बहन अब जब माना कहते हैं ना कि कोई भी चीज को एक तजुर्बा हो जावे है, अपना साला से फसल करता करता तजुर्बा हो जावे तो छोटी मोटी चीजा माना खुद ने भी ध्यान रखनी चाहिए कि भाई आपन ने भी थोड़ा मोट रोकथाम और बचाव का उपाय आनी चाहिए। जैसे कि जो भी फसल या जो भी पौधा जो भी चीज संक्रमित हिस्सा हो जावे माना पौधा या पत्तियां ने काट कर खेत से दूर नष्ट करके कर लेनी चाहिए या गड्ढा में गाड़ देनी चाहिए ताकि जिसे की कहीं से जो बीमारी होवे ना
0: वो
1: अद्धा अन्य पौधा पर या फसलों पर न फैले। और दूसरी प्रकार से जल और खाद को प्रबंधन करनी चाहिए, यानी कि ओवर वॉटरिंग जो कह रहे हैं अंग्रेजी में, यानी कि ज्यादा सिंचाई कह रहे ना कि ज्यादा पानी भी नुकसान होवे कम पानी भी नुकसान होवे।
0: जी
1: भाई अनुमान से ये पतो लाग जानी चाहिए कि कतनो पानी कतनो कम पानी लाभदायक होवे हैं, उन्हीं तरीका से अत्यधिक नाइट्रोजन या यूरिया का इस्तेमाल से बचवा की सलाह देनी चाहिए क्योंकि इससे कहीं होवे जो कीट और बीमारी होवे ना वो बड़े हैं।
0: और देखो सर जब आप ये सारी बातों को ध्यान रखा उनके पास ये बात को भी ध्यान रखनी चाहिए भाई दवा की सही मात्रा और सही समय किसान ने हमेशा ही अनुशंसित दवा और निर्धारित मात्रा को ही प्रयोग करनी चाहिए। ज्यादा दवाई डालबा से बीमारी जल्दी ठीक कौन होवे बल्कि होलो काही अगर ज्यादा मात्रा में दवाई डालेला तो फसल मिट्टी और पर्यावरण पर भी इको बुरो असर पड़े।

0: जाओ और खेती की लागत और बढ़ जाओली। इसके साथ ही फसल की नियमित निगरानी भी देखो सा अपने किसान भाई ने हमेशा ही करती रहनी चाहिए। सप्ताह में एक दो बार खेत को निरीक्षण करें और पत्तिया तना फूल फलाने देखता रहो। अगर कोई बीमारी या कीट की पहचान हो रही जाए, शुरुआत में ही कोई छोटो मोटो कीट लागो छे, तो आप कम खर्च में भी को नियंत्रण कर सका छा।
1: बिल्कुल सा, वो कहवे ना कि सही जानकारी और सही तरीका से जानकारी के बाद जो सावचेती होवे है वो रखनी बहुत जरूरी होवे है। तो भाई जानकारी अगर अपन बात करा तो भाई जद अनीता आवे है या भूमिका आवे है तो बढ़िया बढ़िया जानकारी ले रहा है और जानकारी बहुत बढ़िया भी होवे है। जिना आप लोग जानकारी के साथ साथ वहां जो सावचेती है वो भी रखो सा। और जद जानकारी की बात करूं तो जानकारी के सागे सागे देखो जद महाधुनी आवे ना तो एक बढ़िया बढ़िया सो गीत और मिठास सो भरो गीत ले रहे हैं। तो बहुत बढ़िया सो गीत आ रही है, सुनो सा।

0: ભાઈ ભૂમિકા થી દેખું પિયાજી તો આવલા જ દાવલા, પણ આભાર છે આપણા કાર્યક્રમ વગત તો આપણા કાર્યક્રમમાં આપણા વિષય વિશેષજ્ઞ આ ચુક્યા છે ડોક્ટર અર્જુનસિંહજી, જો આપણને જાણકારી દેવલા રસાયણ યુક્ત ખેતીમાં ટ્રેપ તકનીકી કી ભૂમિકા કા બારા મેં, તો આવશા સુનાયા જાણકારી.
1: રામ રામ પ્રિય કિસાન ભાઈઓ બહેનો, મેં ડોક્ટર અર્જુનલાલ ચૌધરી, અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર એન્ટોમોલોજી વિવેકાનંદ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી જયપુર. આજ અબ બાત કરેલા રસાયણ મુક્ત ખેતી મેં ટ્રેપ તકનીક કી ભૂમિકા. આજ કે સમય મેં ખેતી કી સબસે બડી ચુનૌતી હૈ કીટો કા બઢતા પ્રકોપ. કીટ ફસલ કો નુકસાન પહોંચાતે હૈ, ઉત્પાદન ઘટતા હૈ ઓર કિસાન કો બાર બાર મહેંગી વે જહેરીલી દવાઈઓ કા સારા લેના પડતા હૈ. इसलिए किसान भाइयों, सबसे सस्ता और सबसे आसान उपाय आज बताने जा रहा हूँ. कीट नियंत्रण के ऐसे तरीके भी है जो सस्ते, सुरक्षित और बिना जहर के भी है, जो आज के समय में बहुत ज्यादा उनकी आवश्यकता है. हम बात करेंगे ट्रैप तकनीक के बारे में, विशेष रूप से येलो ट्रैप, ब्लू ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप के बारे में. ये ट्रैप तकनीक है, ये तीनों तकनीक जैविक खेती और रसायन मुक्त खेती की रीढ़ है. तो सबसे पहले बात करेंगे येलो ट्रैप यानी पीला चिपचिपा जाल क्या होता है, कैसे काम करता है. किसान भाइयों, येलो ट्रैप एक पीले रंग की चिपचिपी सीट होती है. कई छोटे छोटे रस चूसने वाले कीड़े पीले रंग की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं. सबसे ज्यादा सफेद मक्खी, माहू, एफिड जिसको अपन एफिड बोलते हैं, लीफ ऑफर, ये तीनों इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट, सकिंग पेस्ट है, जो किसान भाइयों इनको कंट्रोल करने के लिए येलो ट्रैप हम काम में ले रहे हैं. तो इसको कैसे काम में लेना है, क्या क्या करना है, और ये कीट क्या है कि जो भी पीला रंग का आप देखते हो, वस्त्र भी है पीला रंग का, तो वो वस्त्र की तरफ भी आकर्षित होते हैं. इसलिए येलो ट्रैप अपन काम में लेंगे. सब्जियों, जो सारी सब्जियों में ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं आपके, सफेद मक्खी, एफिड हर सब्जी में लगता है, लीफ ऑफर, फिर दालें आ गई, तिलहन में भी, फूलों की खेती में भी, सब में ये हानि पहुंचाते हैं. और इनको बिना दवाइयों के कोई भी प्रकार का अपन को जहर खेत में नहीं डालना है. उसके लिए अपन को कैसे कैसे ट्रैप

मार्केट में भी उपलब्ध है, लेकिन मार्केट से अच्छा है कि किसान भाई घर पे भी अच्छा एक येलो टेप बना सकते हैं। मतलब आसानी से, कोई उसमें ज्यादा वो नहीं है, खर्चा नहीं है, बिल्कुल आसान विधि है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए क्या करना, मान लो घर पे भी आपको अगर कोई चीज जैसे मटका है यूज नहीं आ रहा है, तो मटका का क्या करना है, मटके पे जो ये येलो कलर है, पीला कलर, पीला कलर कर दो उसके ऊपर। अब कलर करने के बाद में उसमें क्या करोगे, जो ग्रीस होता है ना, ग्रीस चारों तरफ उस पर लेप कर देते हैं, ग्रीस का लेप कर देते हैं। फिर लेप करने के बाद में उसको जो भी आपकी फसल है या सब्जी है या कपास है या तिल डाले, तिलन फूलों की खेती है, उससे आपकी जो फसल है उससे 1 से 2 फीट ऊंचाई पर उसको लगा दो। लगाने के बाद में आप ऑटोमेटिक उसकी निगरानी करोगे, आप फिर आप देखोगे भाई मॉर्निंग में लगाया, फिर शाम तक देख के आओगे तो आपको एहसास होगा भाई इतने सारे ये कीट खांसे मतलब इसमें आके चिपक जाते हैं और उनका आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो लगाने की विधि क्या है भाई, 10 से 12 ट्रेप प्रति एकड़, एक एकड़ में आपको कितना लगाना है, 10 से 12 ट्रेप लगाने हैं। फसल की ऊंचाई से भाई, जो आपकी फसल है 2 फीट की है तो 2 फीट से भी ऊपर, 1 या 2 फीट ऊपर, मतलब फसल की जो ऊंचाई है उससे थोड़ा ऊपर लगाना है उसको, मतलब 1 से 2 फीट ऊपर। और 15 से 20 दिन में ट्रेप बदले, तो ये 15 से 20 दिन में ट्रेप आपको बदलना है, मतलब चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो आपने मान लो ग्रीस का लेप करके आपने मटका लगा दिया तो उसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट आ जाएंगे, मतलब जितने कीड़े हैं वो सारे बहुत सारे चिपक जाएंगे, फिर उसको क्या चिपकने की थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है। तो उसको वापस आप एक बार उसको उतार के नया ग्रीस लगा दो, मतलब उसको नया लेप कर दो पूरा, फिर वापस ये चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लाभ क्या है, अब लाभ की बात करें किसान भाइयों, देखो लाभ सबसे सस्ता और सरल उपाय है, मतलब इसमें कोई भी आपको किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं छिड़कनी है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप कोई भी मटका या पीपा जो घर पे मतलब यूजफुल नहीं आ रहा है उसमें आराम से बस पीला कलर करके आप खेत में आसानी से उसको सेटअप कर सकते हो। उसमें ज्यादा नहीं है, छोटा लकड़ी का कोई भी लकड़ी का डंडा लिया है ना, और उसको खेत में गाड़ के और खेत के ऊपर वहां लगा दो छोटे, तो आप कोई भी प्रकार का जहर यूज नहीं कर रहे हो। इसमें जो आपके मित्र कीट है ना, अब आप क्या करते हो भाई, अपने दवाई का स्प्रे करते हैं मान लो किसान भाई हो, तो दवाई उसमें ये थोड़ी पता चलता है भाई ये मित्र कीट है, ये अपनी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो ये सारी चीजें सुरक्षित है। मतलब मित्र कीट को कोई भी नुकसान नहीं होगा, कीट की शुरुआती जानकारी मिल जाती है, जो कीट आपको शुरुआती जानकारी मतलब है कि कीट आना स्टार्ट हो गया, तो वो जैसे ही आपको येलो ट्रेप की तरफ आकर्षित होगी वो उस पर चिपक जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा भाई ये फीड आ रहा है या सफेद मक्खी आ रही है या फिर लीफ ऊपर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे पेस्ट है, तो आपको आसानी से आप पता लगा सकते हो भाई आने लग गए कीट और अपना इलाज भी होने लग गया है। फिर है ब्लू ट्रेप, मतलब येल्लो ट्रेप तो ये 3 इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद में नीला चिपचिपा जाल, तो नीला ब्लू ट्रेप जिसको ब्लू बोलते हैं, ब्लू ट्रेप मुख्य रूप से थ्रिप्स के लिए, जो थ्रिप्स है वो भी एक हानिकारक इंसेक्ट है जो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, के लिए उपयोगी है। थ्रिप्स छोटा कीट है, बहुत छोटा कीट, तो ब्लू ट्रेप से कौन सा कीट नियंत्रण होता है, ओनली थ्रिप्स होता है, उपयोगी फसल है थ्रिप्स। देखो प्याज में अधिक नुकसान पहुंचाता है, मिर्ची में, फूलों की खेती में, और जो ग्रीन हाउस फसलें इसको भी लगाने की क्या विधि है, वही 10 से 15 ट्रेप प्रति एकड़, एक एकड़ में आप 10 से 15 ट्रेप लगा दो ब्लू कलर के, खेत में समान दूरी पर लगाए। अब इसके लाभ क्या है, लाभ थ्रिप्स नियंत्रण में सबसे प्रभावी उपयोग, मतलब दवा छिड़काव की आवश्यकता कम है, जैविक खेती के लिए सबसे उपयुक्त, जो जैविक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती के लिए थ्रिप्स का जो आप कंट्रोल कर रहे हो वो सबसे अच्छा उपाय है। के बाद में एक आपका अब फिरोमोन ट्रेप यानी गंध पास, अब फिरोमोन क्या होता है, फिरोमोन को कैसे यूज करते हैं, ये भी आपका बहुत अच्छा मतलब प्रभावी है। अब फिरोमोन ट्रेप क्या है, फिरोमोन ट्रेप एक ऐसा उपकरण है जिसमें मादा कीट की गंध यानी फिरोमोन को कृत्रिम रूप से बनाकर ल्यूर के रूप में लगाया जाता है। जो फिरोमोन ट्रेप क्या होता है कि जो मादा कीट होता है उसकी गंध होती है फिरोमोन, उसको कृत्रिम रूप से बनाकर ल्यूर के रूप में बनाते हैं, जिससे क्या होता है नर कीट होता है उस गंध से आकर्षित होकर ट्रेप में फंस जाता है और मर जाता है। मतलब जो नर कीट है उसको क्या करेगा, वो आकर्षण करेगा, मतलब उसको अपने पास बुलाने का काम करेगा। तो मादा कीट प्रजनन के समय फिरोमोन गंध छोड़ती है, उसी गंध को कृत्रिम रूप से वैज्ञानिक तैयार करते हैं और उसको एक ल्यूर बनाते हैं, तो वो खेतों में लगाने से क्या होता है कि जो नर कीट है, नर कीट उस गंध की ओर आकर्षित होती है और ट्रेप में पसने से प्रजनन रुक जाता है। अब वो आकर्षित होगा और जो ट्रेप है उसमें वो पस जाते हैं। एक नर कीट 4 से 5 मादा से प्रजनन करता है, एक मादा लगभग 200 से 300 अंडे देती है, यानी एक नर कीट पकड़ने से क्या मतलब है आपको,
किसान भाई एक नर कीट अगर आप फेरोमोन से पकड़ रहे हो इसका मतलब है हजारों कीट पैदा होने से रुक जाते हैं। फेरोमोन ट्रैप की संरचना मतलब कैसा होता है वो, देखो उसमें ल्यूर होता है विशिष्ट कीट के लिए विशेष गंध, और फनल या कंटेनर होता है कीट को पसाने के लिए यंत्र होता है, और ढक्कन होता है मतलब ढक्कन है

0: बारिश और धूप से सुरक्षित। अगर मान लो बारिश आ गई तो वो ऊपर का ढक्कन होता है उससे क्या होता है पानी अंदर नहीं जाता है। बैंगन का फल व तना छेदक, कपास की गुलाबी सुंडी, टमाटर का लीफ माइनर फल मक्खी, गन्ना के कीट, गोभी का डायमंड बैक मॉथ। जो भी अपने ककड़ी खरबूज तरबूज ये फसलें लगाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रकोप होता है फल मक्खी का होता है, तो फल मक्खी के लिए सबसे ज्यादा जो अच्छा उपाय है वो फेरोमोन ट्रैप, बहुत अच्छा इसका उपाय है फेरोमोन ट्रैप। अब इसको लगाना कैसा है, वही 10 से 12 ट्रैप आपको प्रति एकड़, आपकी जो एक एकड़ में 10 से 12 आपको ट्रैप लगाने हैं। फसल की ऊंचाई से 1 से 2 फीट ऊंचाई पर लगाना है और ल्यूर को 30 से 45 दिन में बदल दें, मतलब पुराने ल्यूर जमीन में गाड़ दे। अब पुराना ल्यूर है उसको मतलब इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप इसे बाहर उसको छोड़ दोगे तो जो थोड़ी बहुत भी इसमें गंध बची होगी फिर वो सारे इंसेक्ट उधर आके उसके आकर्षण मतलब उसके आसपास मंडराते रहेंगे। अब इसकी जगह लागत क्या है, लगाने की आप सोचते हो वो बहुत महंगा सौदा है, ये है कुछ भी महंगा नहीं है। लागत ट्रैप में 25 से 70 रुपए के लगभग, 25 रुपए से स्टार्ट होते हैं, 70 रुपए तक अच्छे अच्छे ट्रैप मिल जाते हैं। और जो उसकी लूर जो चेंज करने का लूर आता है वो 30 से 50 रुपए का मात्र इतना ही आता है, एक लूर 30 रुपए से लेके 40 रुपए 35-50 रुपए तक आपको मिल जाते हैं। अब फेरोमोन ट्रैप के लाभ, अब इससे भाई आपको क्या लाभ मिल रहे हैं, थ्रिप्स नियंत्रण में सबसे प्रभावी, जो थ्रिप्स होता है उसके नियंत्रण में सबसे अच्छा प्रभावी है। दवा छिड़काव की आवश्यकता कम है और जैविक खेती के लिए उपयुक्त है, साइन मुफ्त है, कोई प्रकार का आपको केमिकल मतलब किसी प्रकार की दवाई पेस्टिसाइड कुछ भी छिड़कना नहीं है। पर्यावरण के लिए अनुकूल, पर्यावरण बिल्कुल सेफ रहेगा, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। मित्र कीट सुरक्षित है, इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो मित्र कीट सबसे ज्यादा सुरक्षित है, किसान व मजदूर के लिए भी बहुत ज्यादा सुरक्षित है। लंबे समय में लागत कम, अगर आप लंबे समय के लिए यूज कर रहे हो तो इसकी लागत बहुत कम आएगी। अब आवश्यक सावधानी क्या क्या बरतनी है आपको, अगर आप फेरोमोन ट्रैप लगा रहे हो तो उसके लिए आवश्यक सावधानियां क्या है, ल्यूर समय पे बदले। देखो पहला बात है कि जो ल्यूर अगर पुराना हो गया मतलब फिर उसकी गंध थोड़ा कम हो जाती है तो फिर वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। पुराने ल्यूर को सही तरीके से नष्ट करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जो अगर फिर आप अब चेंज कर रहे हो उसका ल्यूर मतलब दूसरा बदलना चाह रहे हो तो जो पुराना ल्यूर है आपको उसको या तो जमीन में गाड़ो, उसको सही से चेंज करना है। उपयोग से पहले सही कीट की पहचान करें, ट्रैप की नियमित जांच करें, उसकी टाइम टाइम से जांच भी करनी चाहिए भाई, उसमें इंसेक्ट भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर आपने ऐसे खेत में लगा दिए और उसमें किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट आकर्षित नहीं हो रहा है तो उसकी जांच करनी चाहिए। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आज आपने जाना कि येलो ट्रैप, ब्लू ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप कैसे आपकी फसल को कीटों से सुरक्षित रखते हैं। कम दवा, कम खर्च, अधिक उत्पादन, यही है आज की स्मार्ट और टिकाऊ खेती। इस संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर अर्जुन सिंह चौधरी जी, जो आप इतनी चौकी जानकारी रसायनिक खेती और मैं ट्रैप और तकनीकी भूमिका का बारे में दिया सर। तो सर अब भूमिका जी धन्यवाद स्वरूप एक चौकी सी लोक रचना सुना दो।
2: बिल्कुल सर, सुना दो सर।

0: भाई वाह सा वाह वाह सा वाह, इतना बढ़िया सो गीत सुनवा दियो सर। गीत के बाद देखो वैसे अनीता बहन समय तो हो चालू है, लेकिन अब बाहर बारिश भी बरस रही है और आज तो भाई आप ना भीगता भीगता घर जाबो पड़ेगी,
1: भीगता भीगता जानी पड़ेगी। पर थोड़ी सी आप सावचेती राख सका छा भाई, आप जिया बरसात से बचाव के लिए रेनकोट भी पहन सका छा, तो बरसात से सीधा न भीगा। और यह आपने ही नहीं हर व्यक्ति ने ध्यान रखनी चाहिए जो ये मौसम में घर से जावो जरूरी छे, काम काज से जावे छे, तो थोड़ा सा आपकी सेहत को भी आप ख्याल रखो कि तरीका से आप अगर बारिश में निकल रहे छो तो स्वास्थ्य को ख्याल रखो।
0: बिल्कुल सर, और स्वास्थ्य के साथ साथ देखो जो लोग घर में भी रह रहे हैं काम काज, जो लोग बाहर काम काज जावे वो तो करे ही सही, जो घर में भी रह रहे हैं टाबर टावना बूढ़ा मनक वो काई कर रहे हैं कि बीमारियां से बचवा के लिए साफ सुथरो पानी पियो, बाहर को खुलो खाबा खाबा से बचो, मच्छर की रोकथाम के लिए घर के आसपास पानी जमा ना हो बदो, ये स्वच्छता खुद में भी रखो और खुद का आसपास का लोग हमने भी पहुंचाओ सा।
1: और सा अब कार्यक्रम को वगत पूरा हो चले तो आज्ञा दिलाओ अनीता ने
0: और भूमिका ना दियो इजाजत करा, राम राम सा।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी, इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से किया गया। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं है। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहन ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सुलता देव, डीएमके सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सकाराम वड़कुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉ अलका गुर्जर, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, डॉ एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गुल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि ये कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गुल्ला बाबू राय, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, आईयूएमएल के हारिस बीरन, यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी और डीएमके सदस्य एल के सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया।
विपक्षी सदस्यों ने

कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और

ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थी। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश सदन चलते हुए दिखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है। गृहमंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एफसीआरए विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। डीएमके नेता टीआर बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने

अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि वे संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके की इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है, विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं, 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है, नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा, सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृहमंत्री इस पर जवाब दें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, गृहमंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है। राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन की ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स पर। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।

कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के बोलों को संगीत से संवारा था जतिन ललित ने।

धरौंदा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, रूना लैला का गाया हुआ गीत नक्शलाल पुरी का था और संगीत जयदेव का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। आर

0: सिंगफील्ड कप शतरंज प्रतियोगिता में जावोखीर सिंदारो पर बड़ी जीत हासिल की। एचसीएल स्कॉश पीएसए चैलेंजर टूर में सूरज कुमार चंद ने हसन मेन शाबी पर शानदार जीत दर्ज की। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 20-20 मैचों की श्रृंखला की घोषणा। अफगानिस्तान श्रृंखला की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप से, जहां तीसरे दिन भी लगातार भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: भारत ने सीनियर महिला फॉइल कैटेगरी में शानदार शुरुआत करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीते। कनाग लक्ष्मी ने सटीक और नियंत्रित खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि जॉयस अशिता ने रजत पदक हासिल किया। उन्होंने इंग्लैंड की जॉर्जिया ग्रीन और एमिली गुडचाइल्ड को पीछे छोड़ते हुए पोडियम पर शीर्ष 2 स्थान हासिल किए। सीनियर पुरुष एपी इवेंट में भी सफलता का सिलसिला जारी रहा, जहां राजेंद्रन शांतिमोली शेरजिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए दिन का 2रा स्वर्ण पदक जीता। शेरजिन दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर पीटर को हराया, जबकि वेल्स के बर्कहार्ट मार्क और साउथ अफ्रीका के लोसवस्की सरगेई ने ब्रॉन्ज मेडल साझा किए। सीनियर पुरुष सेबर इवेंट में सिंह करण सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के शिम युंगी के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर भारत के लिए दिन का 3रा गोल्ड मेडल जीता, जबकि शिम युंगी को रजत पदक मिला। टीम के साथ ही कुमारेशन पद्मा गेशोनिधि ने नाइजीरिया के अकिनियो सोए ओलुवा फोलायेमी के साथ कांस्य पदक जीतकर भारत के मेडल की संख्या में और इजाफा किया। भारतीय टीम अब फॉइल, एपी और सेबर इवेंट्स के फाइनल मुकाबलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शुरुआती 3 दिनों में जीते गए 29 पदकों के उत्साह को आगे बढ़ाते हुए टीम इंडिया लागोस में अपना दबदबा बनाए रखने और शानदार तरीके से अभियान का समापन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रतियोगिता में सीनियर महिला फॉइल, सीनियर पुरुष एपी और सीनियर पुरुष सेबर इवेंट्स में दबदबा बनाते हुए टीम इंडिया के तीसरे दिन के शानदार प्रदर्शन से देश के कुल पदकों की संख्या 29 हो गई है, जिसमें 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात करते हैं शह और मात के खेल शतरंज पर। सिंगफील्ड कप के तीसरे राउंड में आज रात 10:30 बजे से भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद का सामना विंसेंट कीमर से होगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर जावोखीर सिंदारो पर बड़ी जीत हासिल की। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: प्रज्ञानंदा ने 6 घंटे तक चले मैराथन गेम में 95 चालों में शानदार जीत हासिल की। 82वें चाल में सिंदारोव की गलती का फायदा उठाकर प्रज्ञानंदा ने बढ़त हासिल करते हुए जीत पक्की कर ली। 20 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने कैंपेन की शुरुआत अमेरिकन सैम सेवियन के खिलाफ ड्रॉ से की थी और आधे पॉइंट के साथ दूसरे राउंड में एंट्री की थी। सिंदारोव पर जीत ने प्रज्ञानंदा को खिताब की दौड़ में बनाए रखा है। टूर्नामेंट में 3 और अहम नतीजे आए। एरोनियन ने विंसेंट कीमर को, एमवीएल ने सेवियन को और वेस्ली सो ने जॉर्डन वैन फॉरेस्ट को हराया। 2 राउंड के बाद 5 खिलाड़ी 1.5 अंक के साथ लीड साझा कर रहे हैं। आर प्रज्ञानंदा की बात करें तो अपना पहला रैपिड और ग्रैंड चेस टूर के पहले यूएस लेग के तौर पर 2026 सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज में ब्लिट्ज खिताब जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 18 में से 12 पॉइंट्स के साथ रैपिड सेक्शन में टॉप करके अपनी जीत पक्की की और ब्लिट्ज में ओवरऑल खिताब अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के बाद वे अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड रैपिड रैंकिंग के शीर्ष 10 में पहुंचे हैं। सिंकफील्ड कप 2026 ग्रैंड चेस टूर का आखिरी नियमित सीजन स्टॉप और सिग्नेचर क्लासिकल इवेंट है, जो कि 19 अगस्त तक खेला जाएगा। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: पिछले ही सप्ताह आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स का खिताब जीता था और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस प्रतियोगिता की भी बात की जाए सिंगफील्ड कप में भी, तो उन्होंने दूसरे राउंड में चैंपियनशिप चैलेंजर जावोखीर सिंदारो पर बड़ी जीत हासिल की है। पहला मुकाबला उन्होंने ड्रॉ खेला था। और उधर महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन 16 से 26 अगस्त के बीच एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन करेगा। इसमें 10 देशों के 157 खिलाड़ी भाग लेंगे। एमसीए के अध्यक्ष परिणय फुके

0: टूर्नामेंट डायरेक्टर निरंजन गुडबोले और आयोजन सचिव सलील घाटे ने आज इस बात की घोषणा की। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: प्रतियोगिता में 6 इंटरनेशनल मास्टर्स, 24 फिडे मास्टर्स और महिला फिडे मास्टर्स शामिल हैं। एशिया के टॉप अंडर 20 टैलेंट वाले इस टूर्नामेंट में क्लासिकल स्विस फॉर्मेट के 9 राउंड के अलावा रैपिड और ब्लिट्स के 7 राउंड भी होंगे। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, एशिया चेस फेडरेशन और फिडे की देखरेख में होने वाला यह टूर्नामेंट मुंबई के ITC मराठा में खेला जाएगा। यह देश के जूनियर्स के बीच सबसे पसंदीदा इवेंट्स में से एक है, जिसने विश्वनाथन आनंद, अभिजीत कुंटे, तेजस बाकरे और तानिया सचदेव, कोनेरू हम्पी, इवाना फुर्टाडो जैसे मशहूर खिलाड़ियों को चैंपियन बनाया है। क्लासिकल स्विस फॉर्मेट में 157 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि 153 खिलाड़ी रैपिड इवेंट और 151 खिलाड़ी ब्लिट्स इवेंट में खेलेंगे। ओपन सेक्शन के खिलाड़ियों का औसत ELO रेटिंग 2054 है, जबकि जूनियर महिला सेक्शन का औसत ELO रेटिंग 1885 है। ओपन लिस्ट में भारतीय IM मयंक चक्रवर्ती सबसे आगे हैं। उनके बाद रूस के IM आर्टेम पिंगिन और भारतीय IM अपूर्व कामले हैं। जूनियर महिला सूची में भारतीय WFM प्रतीति बोरदोलोई सबसे आगे हैं। इस प्रतियोगिता में विग्नेश अद्वैत वेमुला, आदित्य ढींगरा, अक्षय बोर गावनकर, स्वरा लक्ष्मी नायर, मृतिका मल्लिक और सारणा देवी नरहरी जैसे प्रतिभावान भारतीय खिलाड़ी भी प्रतिस्पर्धा करते हुए नजर आएंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात फुटबॉल पर। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने कल डूरंट कप के अपने आखिरी ग्रुप एफ मैच में FC1 को 3-1 से शिकस्त देकर ग्रुप स्टेज में शानदार रिकॉर्ड के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पार्थिव गोगोई ने दोनों हाफ में गोल दागे, जबकि अलाइदीन अजराई ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए तीसरा गोल किया। FC1 की ओर से इकलौता गोल मोहम्मद इलियास ने किया। हाईलैंडर्स ने अपने ग्रुप स्टेज अभियान का समापन 3 मैचों में 3 जीत के साथ किया और ग्रुप एफ के विजेता बने। वहीं FC1 ने अपने पहले डूरंट कप अभियान का समापन 3 मैचों में 3 अंकों के साथ किया। और अब बात करते हैं स्कॉश पर। HCL स्कॉश PSA चैलेंजर टूर में कल पुरुष प्री क्वार्टर फाइनल में सूरज कुमार चंद ने हसन मिन शावी पर शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: प्री क्वार्टर फाइनल में सूरज कुमार चंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मिस्र के हसन मिन शावी को 11-4, 8-11, 11-2, 9-11, 11-8 से हराया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वाश चैंपियनशिप में सिंगल्स का खिताब जीतने वाले सूरज कुमार चंद ने ये मुकाबला 73 मिनट में अपने नाम किया। एक अन्य रोमांचक मुकाबले में संदेश पलानीवेल रवि कुमार ने 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए छठे सीड अयान वजीर अली को 6-11, 10-12, 11-5, 11-6, 11-7 से मात देकर पुरुष क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिलाओं के वर्ग में टॉप सीड तन्वी खन्ना ने वसुंधरा नंगारे को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। HCL स्क्वैश PSA चैलेंजर टूर ने अब तक इंदौर, मुंबई और चेन्नई में इवेंट आयोजित किए हैं और अब ये कोलकाता चरण में है। इस इवेंट में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में इनामी राशि $9,000 रखी गई है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि पुरुष वर्ग में 8वीं वरीयता प्राप्त ओम सेमवाल, संदेश पलनीवेल रवि कुमार, मोहम्मद गोहर, सूरज कुमार चंद, अहमद सईद सोभी, हाजिम हुसाफ, सैफ रेफाई और शौर्य बाबा ने जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सोहैला हाजिम, अनन्या नारायणन, तन्वी खन्ना, निरुपमा दुमे, कॉरेलिना श्रामकोवा, मेन्ना वालिद, उन्नति त्रिपाठी और रथिका सीलन ने जीत दर्ज की है। बिहार सरकार पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में 651 एकड़ क्षेत्र में विश्व स्तरीय खेल केंद्र विकसित करेगी, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए मजबूत खेल अवसंरचना तैयार हो सके। इसमें लगभग 225 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी, 187 एकड़ में गोल्फ कोर्स और 239 एकड़ में आधुनिक खेल परिसर विकसित करने करने का प्रस्ताव है। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कल इस परियोजना को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता

0: अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना विकसित की जा रही है। और अब बात क्रिकेट पर। बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के साथ प्रस्तावित 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। यह पहला मौका है जब अफगानिस्तान भारत में T20 सीरीज में भारतीय टीम की मेजबानी करेगा। अफगानिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 3 T20 मैचों के सीरीज के मैच 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और उधर दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। वहीं कल हुए मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने वेस्ट दिल्ली लायंस को 8 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में कल दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर 1:30 बजे आउटर दिल्ली वॉरियर्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच होगा। वहीं दूसरे मुकाबले में शाम 7 बजे नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और पुरानी दिल्ली सिक्स आमने सामने होंगे। और अभ्यास मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम श्रीलंका से 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलने के लिए तैयार है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 अगस्त को होगा। 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में किन 5 खिलाड़ियों पर प्रदर्शन पर नजरें होंगी, आइए सुनते हैं उनके बारे में।
1: देवदत्त पटिकल के पास साई सुदर्शन की गैर मौजूदगी में खुद को साबित करने का बढ़िया मौका होगा। वार्म अप मैच में उन्होंने 142 रनों की नाबाद पारी खेली थी। ऐसे में नंबर 3 पर खेलने की तैयारी कर रहे पटिकल के प्रदर्शन पर हर किसी की नजर रहेगी। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए इस श्रृंखला में बल्ले से दमदार प्रदर्शन करना होगा। पंत की हालिया फॉर्म को देखते हुए उनके चयन पर कई सवाल खड़े हुए थे। श्रीलंका के खिलाफ अगर पंत का बल्ला खामोश रहता है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं चाइना मैन कुलदीप यादव टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। टीम में अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की मौजूदगी के चलते कुलदीप को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। वहीं मानव और सारांश जैन ने उनके लिए मुकाबला और कड़ा कर दिया है। अगर तेज गेंदबाजों की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हुई है। अभ्यास मैच में उन्होंने 15 गेंदों में 32 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाया है। वैसे सिराज की हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के आकिब नबी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम में जगह बनाई है। उन्हें बुमराह की जगह मौका मिला है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के सीजन में 10 मुकाबलों में 60 विकेट लिए थे। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और चलते चलते श्रोताओं, आपको बता दें कि ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 19वें ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बना लिए हैं। सुजल सिंह 46 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और अभी अभी दीपक पुनिया उनका साथ देने के लिए क्रीज पर आ गए हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल जगत की हर खबर के साथ आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा

0: वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
3: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने चाहते हैं और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
4: अरे
5: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट

0: करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष दिशाहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
1: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज फुट ओवर ब्रिज जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
3: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहाँ पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को पुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर

तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले

चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए, वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी मजहूर सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म थी पाकीज़ा। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। फिल्म माई लव, मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत।

कच्चे धागे इस फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

रवि की तर्ज थी शकील बदायूनी का लिखा गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी चौदहवीं का चांद, गेटवे ऑफ इंडिया। इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया।

राजेंद्र कृष्ण की कल लिखा गिना हुआ था मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के गाए, फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया के इस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम आपके लिए अब सम्पन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा
2: हूं। कहा जोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।
1: हवा हवाई।

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गई और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने

फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मुडिचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालाचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं, जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।

फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।

इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली। माना, माना।

0: लव।
1: मम्मा मिया
2: पम पम
1: मम्मा मिया
2: पम पम।
3: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब

मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातूमकर

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गईं। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट स्पेशल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी मेरा, समटाइम्स यू विल फील यू आर लेस केविन, समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील यू आर लेस देन मेरा। ट्राई टू हेल्प ईच अदर टू फील इक्वल, इट विल बी नाइस।
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत

श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थी।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोख, चंचल और खूबसूरत अदाकार।

0: अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वासवड़ा का माही चैनल एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10 बजे हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं गाते गुनगुनाते सदाबहार नगमों के सफर पर। इस सफर का आगाज किया है फिल्म मिलन के इस गीत के साथ, जिसमें आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की। गीत को बोल दिए हैं आनंद बख्शी ने और धुन दी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
3: सावन का महीना पवन करे शोर,
4: पवन करे शोर,
3: पवन करे शोर।
4: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर।
3: पवन करे शोर,
4: हाँ

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म जुर्माना से लता मंगेशकर की आवाज में। आवाज थी गीत में बोल थे आनंद बख्शी के, धुन आर डी बर्मन की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरा साया से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत में बोल हैं राजा मेहदी अली खान के और संगीत मदन मोहन का।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म कालीघटा से मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत में बोलते आनंद बख्शी के, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अभिनेत्री से, आवाज है लता मंगेशकर की। गीत में बोल है मजरू सुल्तानपुरी के और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म मंजिल से किशोर कुमार की आवाज में। गीत में बोल थे योगेश की और धुन थी आरडी बर्मन की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज में फिल्म सावन को आने दो से।

ये गीत सुन रहे हैं फिल्म अनजाना से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत में बोल आनंद बख्शी के, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्यार का मौसम से। धुन थी आरडी बर्मन की। आइए आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं केएल यशुदास, हेमलता और रविन्द्र जैन की आवाज में। फिल्म है दुल्हन वही जो पियावन भाई।

ये था आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत का अंतिम गीत, जिसे आप सुन रहे थे फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई से, आवाज यशुदास, हेमलता और रविन्द्र जैन की। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63

0: जिलों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशोनिधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। अगली सभा हमारी कल प्रातः 5:51 पर आरंभ होगी। तब तक आज्ञा दीजिए रेडियो होस्ट शबाना परवीन को। शुभ रात्रि, शुभ बखैर, जय हिंद।